FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास के 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम 102 और एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब से थोड़ी देर में होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव

0: में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चुंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

प्रार्थना हृदय का उफान है, ये स्वर्ग की ओर एक सरल दृष्टि है, ये पहचान और प्रेम की पुकार है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मन की बात को परम पिता परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। तो आइए उसी परम पिता परमात्मा का वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं।

सत्य का दीप धर्म का पंथ है, मर्यादा में बंधा जीवन मंत्र है। धनुष उठाया तो अधर्म कापा, राम नाम ही सबसे उत्तम तंत्र है। जो राम नाम के महत्व को न जाने वो अज्ञानी और अभागा है।

भजन का अर्थ है सेवा करना, ध्यान करना, पूजा करना, कीर्तन करना, अर्चना करना, स्तुति करना, ये सभी भजन के अंग है। भजन साधारण मानव को सहज ही ईश्वर के भाव में डुबो देता है। मनुष्य बिना साधना, तप और योग के ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है, और जो भाव होते हैं वे ईश्वर को सर्वप्रिय होते हैं। वे भाव के ही भूखे हैं, अर्थात भजन ही भगवान का दूसरा रूप है।

जैसे तिलों में तेल, फूलों में गंध, वन में हरतिमा व्याप्त होकर रहती है, उसी प्रकार सहचराचर में ओमकार ही व्याप्त होकर सर्वत्र विद्यमान है। इसके उच्चारण में ऋक, साम, यजुर, अथर्व, ब्रह्म और ब्राह्मण सबका समाहार हो जाता है और ये वो प्रणव मंत्र है जो समस्त ऋचाओं का जन्मदाता है।

ईश्वर का आशीर्वाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि मन से किए गए विश्वास और निष्ठा से मिलता है। सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा से ही हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं।

भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना में आज आपने सुना शान, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, जगजीत सिंह और अनुराधा पोडवाल के स्वरों को। इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था ए हरिहरण का। आकाशवाणी कोटा के इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब आबो हवा में सुनिए वार्ता, विषय है वृक्ष और पर्यावरण। वार्ताकार हैं श्री दिनेश विजयवर्गीय।
1: सोचाओ आज जिस पर्यावरण में हम जी रहे हैं, वो पर्यावरण न तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और न आने वाली पीढ़ी को ये कोई सुलभ स्वास्थ्य दे सकता है। जहाँ तक इस पर्यावरण का बिगड़ने का मूल कारण है, हमारे जो वृक्ष हैं सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वृक्ष जो थे वो कटते जा रहे हैं। मैं आज से 6 दशक पूर्व की बात बताना चाहता हूँ। 6 दशक पूर्व बूंदी शहर में और बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में इतने घने वन हुआ करते थे कि जंगली जानवर तो सहज में देखे जा सकते थे, लेकिन आज 6 दशक की इस यात्रा में इतने वन कट चुके कि अब तो आधे से भी कम वन क्षेत्र देखने को मिलता है, और सारा वन क्षेत्र कुल्हाड़ी आरी के हवाले इस ढंग से कर दिया कि आज हमें सोचना पड़ रहा है। जबकि हमारे ऋषि मुनि और संतों ने प्राचीन काल से ही वृक्षों के महत्व दिया है, और वो चाहते थे कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार का पर्यावरण स्थापित रहे ताकि लोग शुद्ध हवा का स्वच्छंद रूप से आनंद ले सकें और किसी प्रकार का उनको कार्बन डाइऑक्साइड या अस्वस्थकारी वायुमंडल से सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए उन्होंने हमारे कुछ वृक्षों को बचाने की दृष्टि से, जैसे बड़ है, पीपल है और खेजड़ी जैसे वृक्षों को, तो उन्होंने धार्मिक महत्व दिया। उस धार्मिक महत्व से लोग उनको आज भी पूजा करते हैं। उसके पीछे जो भावना है वो यही है कि हमारे वृक्ष सदा हरे भरे रहे और बड़े बड़े वृक्ष जो आज लोग उगाते नहीं उनको सुरक्षित रखा जाए। आज विकास तो हो रहा है लेकिन वृक्ष इतने कट गए उनकी आवाज में वापस वृक्ष लगाए नहीं जा रहे, बल्कि लोग अपने स्वार्थ के कारण पहले ईंधन के रूप में वृक्ष कट गए, उसका धुआं भी बड़ी तेज गति से होता जा रहा, और आज इसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पर्यावरण में जो मौसम का बदलाव आ रहा है उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो दैनिक जीवन है वो इतना प्रभावित हो गया। आज किसानों के मार्च अप्रैल के महीने में जो गर्मी पड़ती है उसमें भी आज बदल हो रहे हैं, कभी बरसात हो रही है, कभी ओले गिरते हैं और आंधी तूफान तेज गति से आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हाड़ के संभाग में इतनी तेज वर्षा ओले हुए कि गेहूं की खड़ी हुई फसलें नष्ट हो गई। तो

इसका मूल कारण यही है कि हमारे जो पर्यावरण में जो पौधे थे वो बेरहमी से नष्ट कर दिए गए, लेकिन अब हम केवल ये कहकर चुप नहीं रह सकते कि बेरहमी से नष्ट हो गए। आज भारत का नागरिक होने के नाते, हमारे एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार के भरोसे हम न रहे बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में, और हर साल जो हम वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं तब भी वृक्ष लगाएं, खुले मैदानों में लगाएं, स्कूलों में लगाएं, स्कूल परिसर में लगाएं, और जहां भी आसपास हम वृक्ष लगा सकते हैं लगाएं। लेकिन वृक्ष लगाने से तात्पर्य नहीं है, उसकी सुरक्षा करने का भी हम उत्तरदायित्व वहन करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति कम से कम अगर 2 या 3-5 पेड़ भी लगाएगा तो काफी घना वातावरण होगा और हमारा पर्यावरण में सुधार होगा। आज विकास के दृष्टिकोण से जगह जगह वन काट के बस्तियां बसाई जा रही है, 4 लेन बन रहा है, तो आसपास के जो नीम के वृक्ष थे वो भी काफी कट गए। अब प्रश्न ये है कि इन कटे हुए वृक्षों को जब तक वापस न लगे तब तक हमारे पर्यावरण पहले की स्थिति में आए, तब ये बहुत अच्छी बात होगी। जब हम पूरे नागरिक इस पर्यावरण के महत्व

0: जगह जगह वन काट के बस्तियां बसाई जा रही है, फोर लेन बन रहा है, तो आसपास के जो नीम के वृक्ष थे वो भी काफी कट गए। अब प्रश्न ये है कि इन कटे हुए वृक्षों को जब तक वापस न लगे तब तक हमारे पर्यावरण पहले की स्थिति में आए, तब ये बहुत अच्छी बात होगी। जब हम पूरे नागरिक इस पर्यावरण के महत्व को समझे करें तभी इसका काम हो सकता है। आज हम जो हमारे ईंधन के रूप में या फर्नीचर के रूप में जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो तो पहले भी करते थे, लेकिन आज धनाधन काफी तेज गति से कट रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम बेरहमी से उसको काटते जा रहे हैं, जबकि हम उस वृक्ष को एक वृक्ष काटे 10 लगाए तब तो उसका अनुपात अच्छा रहे। तो ये जनजागरण कोई सरकार नहीं कराएगी, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है जो इस देश में रह रहा है। और वृक्ष लगाने के लिए मैं आपको एक हमारे मित्र भीलवाड़ा के हैं उनका एक उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से एक पहाड़ी को ऐसा हरा भरा कर दिया कि आज लोग वहाँ पर्यटन दृष्टि से घूमने जाते हैं। कुछ भी नहीं था वहाँ, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति के अकेले व्यक्ति के सोच ने कि जंगल है तो मंगल है, कि आज वहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर किसी के बर्थडे के उत्सव पर वृक्षारोपण किया जाता है, किसी के वैवाहिक वर्षगांठ पर वृक्षारोपण किया जाता है, अथवा किसी बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में वृक्षारोपण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कई ऐसे अवसर खोज निकाले गए जिससे वृक्षारोपण किया जाता है तथा उस वृक्षारोपण की वजह से वो लोग अब वहाँ जाने देखने लगे।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा थैलेसीमिया रोकथाम के जरूरी कदम, डॉक्टर अमृत लाल बेरवा से राजेश महावर की बातचीत और इसी बीच आप सुनेंगे गांधी चर्चा। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत सुहाना सफर सदाबहार गीत। आठ बजे सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। और 8:30 पर आप आनंद लेंगे सुगम संगीत का। नौ बजे होंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नौ बजकर 10 मिनट पर आप आनंद लेंगे फिर से फिल्म संगीत का। सुबह 9:30 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। आज के इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी भेंट वार्ता जिसका विषय होगा मानवता का प्रतीक रेड क्रॉस। श्री अशोक कुमार विजय से चर्चा रहेगी जिसका विषय होगा ना हो नींद से समझौता। साथ ही जानकारी होगी आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवा के बारे में। दोपहर 12 बजे होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। आज के इस कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे फिल्मी गॉसिप, जानेंगे नॉलेज कॉर्नर और करंट अफेयर्स के बारे में। गीत संगीत का भी आनंद लेंगे।

जानकारी होगी, फसल चक्र पर चर्चा रहेगी, विश्व रेड क्रॉस दिवस पर और नवीन कृषि सूचनाएं भी आप जान पाएंगे। 7:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती और रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी में, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

शाम 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 6:05 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। शाम 7 किसान भाई सुनेंगे चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और कृषि अनुसंधान। जानकारी देंगे डॉक्टर एम सी जैन।

0: आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। अस्याम यात्रायां प्रैष्य विभागेन सम्बद्धः प्रमुख कार्यक्रमः सहैव मुंबई पुणे नगरयोः प्रमुख शैक्षणिक सार्वजनिक कार्यक्रमेषु सहभागिता सम्मिलिता भविष्यति। संचार मंत्रालयेन संसूचितं यत् अद्य श्री सिंधिया महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीस इत्यनेन सह मुंबईयां अंधेरी रेल स्थानक उपप्रेक्षालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। आकाशवाणी स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्य अवसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं करिष्यति। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवनं रेलभवनं आरबीआई भवनं च गच्छति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन क्रीडायां भागं ग्रहीष्यन्ति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे का समय है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरण और हवा का बसेरा। इस खुले आसमान में आप देखिए सूरज का चेहरा, देखिए कितना सुंदर है इस सुबह का सवेरा। श्रोताओं, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ नमस्कार, कोटा सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधियारों को मिटा देती है और एक नई जीवन की ज्योत जलाती है, जो हमारे जीवन में खूब सारा प्रकाश करती है। तो श्रोताओं, अगर अपने जीवन को और भी प्रकाशमय बनाना है तो आलस्य त्याग कर इस खूबसूरत सुबह का आनंद लीजिए इस मधुर गीत के साथ, और बने रहिए कार्यक्रम नमस्कार कोटा में हमारे साथ।

0: श्रोताओं, इस मधुर गीत में छिपा है हम सभी के लिए खूबसूरत संदेश कि विपत्ति सभी पर आती है, लेकिन जो व्यक्ति फिर से उठकर तिनका तिनका जोड़कर अपनी कुटिया को संभालता है वही सच्चा इंसान है। जो आधा पेट खाकर दूसरों की प्यास बुझाने में अपनी सेवा देता है, निस्वार्थ मन से जो दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर उन्हीं के द्वार आते हैं। श्रोताओं, सीखना हो तो इस प्रकृति से भी सीखो जो निस्वार्थ मन से समय समय पर हमें हर तरह के वातावरण का आनंद दिलाती है। सर्दी में धूप तो गर्मी में शीतलता प्रदान करती है और असल में निस्वार्थ सेवा मन को बेहद सुकून देती है। श्रोताओं नमस्कार, कुटा कार्यक्रम में हम अच्छे विचार से लेकर हर तरह की जानकारी और जागरूकता से संबंधित विषयों पर आपसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और आज भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। इस पर अधिक जानकारी के लिए लीजिए सुनिए भेंट वार्ता जिसका विषय है थैलेसीमिया रोकथाम के जरूरी कदम। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमृतलाल बेरवा और इनसे भेंट कर रहे हैं राजेश महावर।
1: श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम नमस्कार कुट्टा आप सुन रहे हैं और आप जानते हैं श्रोताओ इस कार्यक्रम में तमाम तरह की जानकारियां आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। श्रोताओ आज हम विश्व थैलेसीमिया दिवस मना रहे हैं। ये तकलीफ बहुत ही खतरनाक होती है, इसके लिए हमें किस तरह से बचाव किया जाना बेहतर हो पाएगा, इसी विषय पर आज हम स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमृतलाल बरवा जी हैं, आप सीनियर प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हैं शिशु रोग विभाग जेकेलोन अस्पताल मेडिकल कॉलेज कोटा के अधीन। बड़े मेधावी छात्र रहे हैं अपने स्कूल समय से ही और उन दिनों जब 10वीं कक्षा में मेरिट आया करते थे तो बड़ी बात हुआ करती थी और एक खास बात यह है कि आज भी उस विद्यालय में जहां पर डॉक्टर अमृतलाल ने पढ़ाई की थी, अपनी स्कूली शिक्षा की थी, वहां आज भी आपका नाम अंकित है और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज कोटा के फाउंडर फैकल्टी में से एक आप हैं। तो डॉक्टर अमृतलाल बरवा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार साहब, धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब आज हम कार्यक्रम के जरिए विशेष जानकारी श्रोताओं को दिलवाना चाह रहे हैं। आज हम वैश्विक रूप से थैलेसीमिया दिवस मना रहे हैं
2: जी।
1: डॉक्टर साहब ये दिवस के बारे में हम आपसे जानेंगे लेकिन इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये थैलेसीमिया क्या है, इसका नाम अक्सर लोग सुना करते हैं, ये किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करता
2: है? बिल्कुल, देखो थैलेसीमिया जो है ये बीमारी, इसके बारे में हालांकि आजकल सभी लोग बाग थोड़ा बहुत जानते हैं, ये एक आनुवंशिक बीमारी है
1: जी।
2: और इसमें, इस बीमारी में जो थैलेसीमिया ग्रस्त जो बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप की से ही पैदा होता है। माँ बाप के अगर जीन्स में कुछ डिफेक्ट है तो उसकी वजह से थैलेसीमिया का बच्चा पैदा होता है। और इसमें क्या होता है कि खून का जो बनने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है और उसकी वजह से वो खून बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और बच्चे में खून की

0: बार बार बार बार कमी होती चली जाती है, और वो खून की कमी इतनी हो जाती है कि उसको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाने से उसकी उस खून चढ़ाने की वजह से उसको नुकसान होता है, फिर उसके लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं, और शरीर के पूरे शरीर पर भी असर पड़ता है, जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और ये एक बीमारी ऐसी है, आज की तारीख तक भी कोई निश्चित रूप से इलाज नहीं है, और जो इलाज है वो बहुत महंगा है, उपलब्ध है पर महंगा बहुत है, हर किसी के अप्रोच के बाहर है। हालांकि राज्य सरकार इलाज करा रही है, क्योंकि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरीका होता है, उसमें इलाज हो जाता है, पर वो हर वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है
1: जी। आनुवंशिक रक्त विकार आपने बताया, और आपने जो स्थितियां बताई कि जिस तरह से इसके उपचार के तहत व्यक्ति को गुजरना पड़ता है वो बड़ा दर्दनाक
0: जी,
1: और जीवन भर ये तकलीफ देखनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, ये थैलेसीमिया का जो परिचय है बहुत ही खतरनाक है, और अगर हम ये जाने तो इसका जो प्रसार हो रहा है, इसका जो फैलाव हो रहा है इस तकलीफ का, क्या हम ये जाने कि ये एक जानकारी की कमी की वजह से इसका विस्तार हो गया?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप ही देखिए थैलेसीमिया, जैसे मैंने कहा ये आनुवंशिक बीमारी है
1: जी,
0: और इसमें दो तरह के होते हैं, एक थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया ट्रेट
1: जी।
0: तो मेजर को तो पता लग जाता है कि मेजर में खून की कमी होती है, बच्चा सफेद हो जाता है, धीरे धीरे उसको कमजोरी हो जाती है, खून कम होता है तो उसको डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं, वहां जांच करा के पता लग जाता है
1: जी।
0: पर वो बच्चा कहां से आया? माँ बाप से। अब माँ बाप में क्या है कि ट्रेट होता है, थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया ट्रेट का मतलब ये होता है कि उसमें उस थैलेसीमिया पैदा करने के जीन्स खराब है, जीन्स में कुछ गड़बड़ है और उनको पता ही नहीं है। अब जिस एक अगर माँ के अंदर खराबी है और पाप में भी खराबी, और तो दोनों का अगर जो बच्चा अगर पैदा होगा तो उसमें 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा पैदा हो सकता है। तो आजकल हम इसी बात पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई हर माँ बाप को शादी से पहले ये जांच करा लेना चाहिए कि माँ में या बाप में थैलेसीमिया का ट्रेट वाला जीन्स कैरियर तो नहीं है। अगर कैरियर होगा तो एक अगर माँ कैरियर है, बाप भी कैरियर है, तो दोनों में जो बच्चा होगा वो 25% चांसेज है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। और अगर एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा, जैसे मैंने कहा कि ये इस बच्चे का इलाज भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि बार बार खून चढ़ाना पड़ रहा है, बार बार दवाइयां लेनी पड़ रही है, इससे पूरी फैमिली ना कि पूरे रिश्तेदार सारे बीमार, सारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ा परेशानी का कारण है, क्योंकि खून का इंतजाम करना इतना आसान काम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इलाज भी महंगा है, परमानेंट इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उसके खुद के कॉम्प्लिकेशन है, महंगा भी बहुत है, और अभी हालांकि जीन थेरेपी भी आ गई है पर वो भी बहुत कॉस्टली। तो ऐसे बच्चे को हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चा पैदा ही ना हो
1: जी।
0: अगर बच्चा पैदा हो तो वो स्वस्थ बच्चा पैदा हो
1: जी।
0: इसके लिए मैं इस थैलेसीमिया दिवस में माँ बाप से सभी से, हालांकि सरकार भी इस बारे में बहुत प्रयास करते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कानून भी बन जाए, और ये कई देशों ने कानून बना दिया कि जैसे हम शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाते हैं, ऐसे थैलेसीमिया की जांच की जन्म कुंडली मिलाई जाए तो ही आप शादी की जाए। हालांकि अब गवर्नमेंट ने यह मैंडेटरी कर दिया कि जैसे ही माँ प्रेग्नेंट होती है इमीडिएटली उसका थैलेसीमिया के लिए जांच कराया जाता है
1: जी।
0: अब अगर उसमें आता है तो फिर उसका एंटीनेटल डायग्नोसिस कराया जाता है, जैसे माँ गर्भवती उसके 5-6 सप्ताह के ऊपर उसका, जैसे ही बच्चा पैदा उसको पता लगा कि भाई गर्भवती होगी, डॉक्टर के पास गई तो थैलेसीमिया की जांच होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जांच, वो उसको मैंडेटरी है कराने के लिए। जैसे अगर उसमें थैलेसीमिया का कैरियर या ट्रेट अगर पता लगता है तो फिर उसको एडवाइस करते हैं कि भाई आप एंटीनेटल डायग्नोसिस के लिए जाइए। तो उसमें क्या करते हैं, माँ के खून से भी जांच होती है, और उसमें भी अगर सस्पिशियस है तो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा है
1: शिशु
0: वहां से उसके प्लेसेंटा से और माँ के वहां से इसका ब्लड लेते हैं, उस ब्लड लेकर के उसको कंफर्म किया जाता है कि इसमें थैलेसीमिया वाला बच्चा है या नहीं है। अगर वो थैलेसीमिया बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है तो हम उसको सलाह देते हैं, ये सारी प्रक्रिया उसको 20 सप्ताह से पहले पहले पूरी करनी होती है।
1: तो
0: अगर 20 सप्ताह से पहले पहले अगर पता लग जाता है कि थैलेसीमिया का बच्चा है तो हम उसको गर्भपात की सलाह देते हैं, और अगर 20 सप्ताह के बाद अगर पता चलता है तो फिर गर्भपात करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, फिर आपको उस बच्चे को केयर करना ही पड़ेगा
1: जी।
0: तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही शादी से पहले, और अगर शादी से पहले किसी कारण से नहीं करा पाए तो आप बच्चा पैदा होने से पहले तो अपनी जांच कराई लें, ताकि उसके हिसाब से आप तैयार रहें कि एंटीनेटल डायग्नोसिस करा लें, और अगर बच्चा थैलेसीमिया का अंदर पेट में है तो उसको उसी टाइम उसको 20 सप्ताह से पहले उसका समापन करा
1: जी। और डॉक्टर साहब, ये जो गर्भपात की आपने बात बताई, ये कानून वैध है?
0: बिल्कुल, अगर थैलेसीमिया मेजर उसका डायग्नोसिस हो जाता है कोरोनिक विलाई सैंपलिंग में तो उसका गर्भपात कानूनी रूप से वैध किया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो बच्चा अगर पैदा होगा तो उस बच्चे की दिक्कतें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा, उसको देखते हुए उसको समापन करने की परमिशन
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी जो बातें बताई ये एक थैलेसीमिक बच्चे की पीड़ा को व्यक्त करता है कि उसका जीवन कितना दुष्कर हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, जब संतान उत्पन्न की बात होती है और ये जो प्रक्रिया है पूरी, क्या हम ये मान लें कि अगर सरकारी अस्पताल में कोई दंपति जाए और गर्भधारण के पहले वो तमाम जानकारियां ले लें तो इन स्थितियों से काफी हद तक वो बच सकते हैं?
0: बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में ये जांचें फ्री होती हैं, और आजकल तो मैंडेटरी है, आप जैसे भी गर्भवती महिला जैसे जेकेलोन गई या किसी भी सरकारी अस्पताल जाएगी, वहां जो पहली जांच होती है, जैसे ही पता लगता है उसका पीरियड मिस हो गया है और गर्भवती हो गई है, तो उसी टाइम ये सारी जांचें कराना जरूरी होती है
1: जी।
0: अब उसके बाद की जो आगे की जांचें उनकी सुविधाएं क्या है कि उसके लिए हायर सेंटर्स पे जाना पड़ता है
1: जी,
0: आपको जयपुर भी जाना पड़ सकता है।

0: सारी मॉनिटरिंग वहां पे होती है, और उसके आयरन अगर बढ़ रहा है तो फिर उसको चिलेसन की थेरेपी दी जाती है। वो ओरल टेबलेट एक गोली रोज की खानी होती है, सरकार उसकी तरफ से पूरी पूरी मुफ्त दवा सारी चीजें मिलती हैं, उसका सारा सब कुछ इसी के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। आईएमए जो कि चिकित्सकों की सबसे बड़ी बॉडी है, गायनी की फोक्सी जो स्त्री रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी है, और पीडियाट्रिक्स, तीनों संस्थाएं मिलकर के इसी क्रम में चिकित्सक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चिकित्सक का रोल होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का बहुत बड़ा रोल होता है, और बच्चों के डॉक्टर्स का। तो ये तीनों की संस्थाएं आईएमए, फोक्सी और आईएपी, तीनों संस्थाएं मिलकर के इन्होंने 7 तारीख को हम ऐसा प्रोग्राम किया है जिसमें थैलेसमिया में पूरी चर्चा की। इसी क्रम में 8 तारीख को भी हम जेकेलोन में भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उनको सारे रोगियों को इसके बारे में अवेयरनेस की जागरूकता करेंगे, और हम इस भी ज्यादा जोर देंगे कि भाई आप अपना एंटीनेटल डायग्नोसिस पहले कराएं बच्चा पैदा होने से पहले।
1: जी डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब आज जब इतनी महत्व की बात आपने कही तो और क्या खास कहना चाहेंगे
0: इसमें? मैं सबसे पहला तो यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों की जो भी शादीशुदा के लायक है उनका एक बार थैलेसीमिया कैरियर की जांच जरूर करा लें। उसमें कुछ नहीं करना, आपको सीबीसी करानी और इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करा लें, और वो कार्ड आप अपना पास रखें, जिससे भी जहां भी बात चलाए उनसे भी कहो भाई साहब एक बार थैलेसीमिया की आप जांच करा लें, तो उससे मिला अगर वो कैरियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कैरियर फिर अगर आप अनअवॉइडेबल है, नहीं हमको तो शादी करना जरूरी है, तो जब भी बच्चा पैदा करें उस टाइम हालांकि सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ उसकी जांच कराते ही कराते हैं, और पर उसका एंटीनेटल डायग्नोसिस से पूरा कराएं। अगर थैलेसीमिया बच्चा है तो उसको का समापन करा दें, स्वस्थ बच्चा है तो पैदा करें, और उसका इलाज अगर गलती से बाय पैदा हो गया तो फिर पूरा उसका इलाज कराएं, और उसका खून बढ़ने के साथ खून को आयरन की कमी होने की दवाएं भी चालू करनी पड़ेगी। कई बार जब खून कम होता है तो तिल्ली बहुत बड़ी बढ़ जाती है, स्प्लेनेक्टमी करानी पड़ती है, उसके लिए वैक्सीन लगाने पड़ते हैं, ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं तो उनको वैक्सीन भी सारे लगवाने पड़ते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हर राज्य सरकार ने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है, हर राज्य की चिकित्सा सेवा अस्पताल में सारे वैक्सीन, सारी ब्लड, सब चीजें मुफ्त मिलती है। इवन यहां तक कि थैलेसीमिया के उपचार वाले को अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ट्रेन में, बस में, सब में कंसेशन मिलता है, उनको डिसेबिलिटी की श्रेणी में भी लिया गया है। जैसे आपका थैलेसीमिया का बच्चा आपका बड़ा हो गया, पढ़ रहा लिख रहा है, तो उसको राज्य की सेवाओं में आरक्षण भी मिलता है, क्योंकि ये विकलांगता की श्रेणी में इसको भारत सरकार ने शामिल कर लिया है, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो करने के बाद उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसको जो भी राज्य की सेवा की जो सरकारी सुविधाएं मिलती उनमें उनको फायदा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब ये आपकी ओर से बहुत ही महत्व की जानकारी श्रोताओं तक पहुंची है, और खास बात तो यह है कि विवाह एक ऐसा संस्कार है हमारे समाज में जो परिवार को आगे बढ़ाता है, और आगे स्वस्थ परिवार बढ़े इसके लिए आपने श्रोताओं को चेताया है। डॉक्टर साहब आपके आकाशवाणी आकर और इस तरह की महत्व की जानकारी देने के लिए बहुत आभार व्यक्त
0: करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। और
1: जी तो श्रोताओं, डॉक्टर अमृत लाल जी से ये महत्व की जानकारी आपने सुनी, आशा करते हैं इस जानकारी का अपने जीवन में आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता थैलेसीमिया रोकथाम के जरूरी कदम विषय पर डॉक्टर अमृत लाल बेरवा से राजेश महावर की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, कोटा कार्यक्रम हमारा जारी है, लीजिए श्रोताओं इसी बीच सुनिए गांधी चर्चा, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन, और वाचन स्वर है राजेश महावर का।

श्रोताओं, गांधी चर्चा के अंतर्गत आप बापू की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से उद्धृत विभिन्न प्रसंग सुन रहे हैं। आज की कड़ी में बच्चों की शिक्षा के बारे में बापू के विचार। सन 1897 के जनवरी में जब मैं डर्बन उतरा तब मेरे साथ 3 बालक थे। मेरा भांजा लगभग 10 वर्ष की उम्र का, मेरा बड़ा लड़का 9 वर्ष का और दूसरा लड़का 5 वर्ष का। अब इन सबको कहां पढ़ाया जाए? मैं अपने लड़कों को गोरों के लिए चलने वाले स्कूल में भेज सकता था, पर वह केवल मेहरबानी और अपवाद रूप होता। दूसरे सब हिंदुस्तानी बालक वहां पढ़ नहीं सकते थे। हिंदुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए ईसाई मिशन के स्कूल थे, पर उनमें मैं अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार न था। वहां दी जाने वाली शिक्षा मुझे पसंद न थी। वहां गुजराती द्वारा तो शिक्षा मिलती ही कहां से, सारी शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाती थी, अथवा बहुत प्रयत्न किया जाता तो अशुद्ध तमिल या हिंदी में दी जा सकती थी। पर इन और ऐसी अन्य त्रुटियों को सहन करना मेरे लिए संभव न था। मैं स्वयं बालकों को पढ़ाने का थोड़ा प्रयत्न करता, पर वह अत्यंत अनियमित था। अपनी रुचि के अनुकूल गुजराती शिक्षक मैं खोज न सका। मैं उन्हें देश

भेजने के लिए तैयार न था, उस समय भी मेरा ख्याल था कि छोटे बच्चों को माता पिता से अलग नहीं रहना चाहिए। सुव्यवस्थित घर में बालकों को जो शिक्षा सहज ही मिल जाती है, वह छात्रालय में नहीं मिल सकती। अतएव अधिकतर वे मेरे साथ ही रहे। लड़कों को मैं स्वयं जितना समय देना चाहता था उतना दे नहीं सका। इस कारण और दूसरी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं दे सका। इस विषय में मेरे सब लड़कों को न्यूनाधिक मात्रा में मुझसे शिकायत भी रही है, क्योंकि जब जब वे बीए, एमए और मैट्रिकुलेट के भी संपर्क में आते, तब स्वयं किसी स्कूल में पढ़ सकने की कमी का अनुभव करते थे। इस पर भी मेरी अपनी राय यह है कि जो अनुभव उन्हें मिला है, माता पिता का जो सहचर्य वे प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रता का जो पदार्थ पाठ उन्हें सीखने को मिला है, वह सब उन्हें न मिलता यदि मैंने उनको चाहे जिस तरह स्कूल भेजने का आग्रह रखा होता। वे बालक और मेरे लड़के आज समान अवस्था के हैं। मैं नहीं मानता कि वे मनुष्यता में मेरे लड़कों से आगे बढ़े हुए हैं, अथवा उनसे मेरे लड़के कुछ अधिक सीख सकते हैं। फिर भी मेरे प्रयोग का अंतिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता है। यहाँ इस विषय की चर्चा करने का हेतु तो यह है कि मनुष्य जाति की उत्क्रांति का अध्ययन करने वाले लोग गृह शिक्षा और स्कूली शिक्षा के भेद का और माता पिता द्वारा अपने जीवन में किए हुए परिवर्तनों का उनके बालकों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका कुछ अंदाज लगा सकें। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण का एक उद्देश्य यह भी है कि सत्य का पुजारी इस प्रयोग से यह देख सके कि सत्य की आराधना उसे कहाँ तक ले जाती है, और स्वतंत्रता देवी का उपासक देख सके कि वह देवी कैसा बलिदान चाहती है। बालकों को अपने साथ रखते हुए भी यदि मैंने स्वाभिमान का त्याग किया होता, दूसरे भारतीय बालक जिसे न पा सकें, उसकी अपने बालकों के लिए इच्छा न रखने के विचार का पोषण न किया होता, तो मैं अपने बालकों को अक्षर ज्ञान अवश्य दे सकता था। किंतु उस दशा में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जो पदार्थ पाठ वे सीखे वह न सीख पाते। और जहाँ स्वतंत्रता तथा अक्षर ज्ञान के बीच ही चुनाव करना हो, वहाँ कौन कहेगा स्वतंत्रता अक्षर ज्ञान से हजार गुना अधिक अच्छी नहीं है। सन 1920 में जिन नौजवानों को मैंने स्वतंत्रता घातक स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था, और जिनसे मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्टी फोड़ना गुलामी रहकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अच्छा है, वे अब मेरे कथन के मर्म को कदाचित समझ सकेंगे। अभी आपने बच्चों की शिक्षा पर बापू की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से वृतांत सुना। अगली कड़ी में आप अन्य वृतांत के लिए सुनते रहिए गांधी चर्चा।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी गांधी चर्चा, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन, और वाचन स्वर था राजेश महावर का। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है 8 मई और आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका उद्देश्य लोगों में उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता भावना को विकसित करना है। इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

है। तो श्रोताओं, निस्वार्थ सेवा का भाव रखने से जीवन सरल और सार्थक होता है। तो अपने जीवन को सरल रखिए, सार्थक रखिए। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कार्यक्रम का संयोजन रहा तेजराम मीणा का, सह सहयोग रहा राजेश महावर का। अब दीजिए निशा रावल को अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत सुहाना सफर सदाबहार गीत। सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए पहली पेशकश हेमलता के स्वर में, शब्द रचना रविंद्र जैन की, संगीत रविंद्र जैन का। और फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाई।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी कोटा।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का। फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत सुहाना सफर और सदाबहार गीत।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पीवे जी, ओ ढोला जी।

प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: और लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं येसुदास के स्वर में, शब्द रचना है रविंद्र जैन की, संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम चित्तचोर।

0: 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
1: फिल्म संगीत का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए सुनिए अगला गीत।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत से अंतिम गीत।

जसपाल सिंह और हेमलता द्वारा गाए इस एक गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभाग।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से

0: लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए

0: 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभाग

0: का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। 8:15 का समय है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

लोक संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का राम राम। श्रोताओं, सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सरिता राज के स्वर में। गीत के बोल हैं मारी घूमर नखराली।

अभी आपने सुना सरिता राज के स्वर में ये गीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अगला लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और अभी आपने सुना बनारसी लाल के स्वर में ये गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत सरिता राज के स्वर में।

सरिता राज द्वारा गाए इसी गीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सुगम संगीत।

अभी आपने सुना कैलाश खेर की आवाज में ये गीत सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए सुनिए अगला गीत।

आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और अभी आपने सुना नुसरत फतेह अली खान के स्वर में ये गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत राहत फतेह अली खान के स्वर में।

राहत फतेह अली खान के स्वर में यह गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फ्यूजन के स्वर में। शब्द रचना और संगीत निर्देशन शफकत अमानत अली का।

फ्यूजन की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। लीजिए सुनिए सुगम संगीत से अंतिम गीत आबिदा परवीन की आवाज में।

आबिदा परवीन द्वारा गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए 2 दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे मेरा खेत का आम है। तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है। तो ये भी मैं आपसे तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है।

0: अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
1: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कल SBI पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रूपये की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
2: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और प्रीमियम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा कराकर क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था, उससे पहले हमारी जानकारी आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा गजनेत्र सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और भरतपुर में आज भी बादल छाए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार किया। वहीं शहरों में अधिकतम तापमान की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती में हीट वेव का नया दौर शुरू। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, ACB, CIDCB, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विश्व की युद्ध नीतियों और रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकार लगभग 3 गुना अधिक है और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी। वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।

0: होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, 9:10 का समय है, अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं सुनिए पहला गीत, अलका याग्निक अभिजीत के स्वर में, शब्द रचना है इब्राहिम अशफकी, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम आप मुझे अच्छे लगने लगे।

अलका याग्निक और अभिजीत के स्वर में यह गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से हम बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लकी अली के स्वर में, शब्द रचना है इब्राहिम अश्क की, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम कहो ना प्यार है।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। चौपाल कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है जलवायु परिवर्तन और कृषि अनुसंधान। जानकारी देंगे डॉक्टर एम सी जैन। जो भी श्रोता इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं वे फोन कर सकते हैं 0744-2941142 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

निजी श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत अनु मलिक का। फिल्म का नाम फिजा।

उदित नारायण और अलका याग्निक द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

और आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रही है आपकी रेडियो सखी कविता। तो स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ सखियों, अक्सर हम नींद नहीं आने की समस्या और आ जाए तो बार बार नींद खुलने की समस्या से परेशान होते रहते हैं। देर रात तक जागने के सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई देर रात तक टीवी देखने का शौकीन होता है तो कोई मोबाइल देखने का, कोई देर रात तक जागकर काम करता है। सखियों, आज आप सोच रही होंगी कि अभी तो सुबह का समय है, जागने का है, तो मैं सुबह सुबह सोने की बातें क्यों कर रही हूँ। तो वो इसलिए मेरी प्यारी सखियों, क्योंकि नींद जो है, हमें नींद से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींद से समझौता सीधे तौर पर आपकी सेहत, कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देर रात तक जागने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है और इसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। हमें जो नींद है वो अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद से हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, याददाश्त तेज रहती है और बीमारियों से बचने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने का नियम बनाएं। शुरू में सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, टीवी और लैपटॉप बंद कर रख देना चाहिए। और हाँ, दोपहर के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं वो अक्सर अपनी नींद को भगाने के लिए रात में चाय या कॉफ़ी बनाकर पीते हैं। हमने और आपने भी तो यही किया है अपने एग्जाम टाइम में, जिससे हमारी नींद भाग जाया करती थी। इसलिए अच्छी नींद के लिए इनका सेवन बंद कर दें। अपने सोने वाले कमरे में ज्यादा सामान ना रखें, बिस्तर साफ रखें और कमरे में तेज रोशनी तो बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर आपको थोड़ा सा उजाला चाहिए तो हल्की रोशनी रखें, जिससे आंखों पर चकाचौंध सी महसूस नहीं होगी और आराम से नींद आएगी। सखियों, अगर आपको संगीत पसंद है तो अच्छी नींद के लिए लाइट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आपने तो देखा ही होगा, जब हम किसी बच्चे को सुलाते हैं अपनी गोद में, जबकि वो 2-3 महीने का ही होता है, तो हम उसे लोरी गाकर सुनाते हैं और वो लोरी सुनकर बच्चा हमारी गोद में आराम से सो जाता है। ये संगीत है जो आपके दिल और दिमाग को शांत बनाए रखता है, इसलिए हल्का और लाइट म्यूजिक आप सुन सकती हैं। इसमें जो हमारी जो म्यूजिक की चॉइस होती है वो आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकती हैं, क्योंकि जो हमारा म्यूजिक है वो हमें तरोताज़ा महसूस कराता है। और सखियों, नींद नहीं आने का एक कारण और भी है, लेकिन इसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, और ये इश्क है भाई। इश्क में नींद नहीं आती, सपने आते हैं। अपनी महबूब के

सितारे ये खबर लाए कि अब वो भी परेशान हैं। सितारे ये खबर लाए कि अब वो भी परेशान हैं। सुना है उनको नींद आती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं।

0: मई और आज ही के दिन हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। इस संस्था का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है बूंदी रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अशोक कुमार विजय जी को। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में।
1: धन्यवाद, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: अशोक जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना किसने, कब और क्यों की?
1: 1959 में यूरोप में सेल्फिनों में एक लड़ाई
0: जी,
1: उस समय लड़ाई जमीन पे होती थी, आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट द्वंद्व होता था
0: जी।
1: तो उसमें जो घायल हो जाते थे सैनिक, उनकी परवाह नहीं करते हुए सैनिक आगे बढ़ जाते थे
0: जी।
1: तो वो घायल अपने इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे
0: जी।
1: तो वो एक बड़ी त्रासदी थी
0: जी।
1: तो हेनरी डोनांट ने
0: जी,
1: उनको ये बहुत रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत गलत हो रहा है, इसका कुछ होना चाहिए। उन्होंने विचार किया और एक दल बनाया कुछ लोगों का, ताकि वो युद्ध में जितने घायल लोग हैं उनको तुरंत वहां से उठा के और उनका इलाज के लिए अस्पताल में या जो भी यथासंभव हो उनको बचाने की कोशिश करें। और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा
0: जी।
1: उसमें बहुत लोगों की जान बची
0: जी।
1: और फिर उसका दल का नाम उन्होंने बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी रख दिया, वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बनी।
0: अशोक जी, ये तो रही विश्व स्तर पर स्थापना की बात, भारत में इस समिति की स्थापना कब हुई और रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके साथ ही इसके नीचे की शाखाओं के संचालन की जिम्मेदारी कौन संभालते हैं?
1: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट 1920
0: जी,
1: में इसमें पार्लियामेंट का एक एक्ट है, उसके तहत इसका गठन किया गया। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के राष्ट्रपति हैं
0: जी,
1: और हर राज्य का अध्यक्ष जो है वहाँ का राज्यपाल होता है। इसी प्रकार जिलों में वहाँ का कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होता है
0: जी।
1: और उसके अलावा जो उनके शाखा के सदस्य होते हैं, जैसे बूंदी शाखा है
0: जी,
1: इसमें हमारे पास जितने सदस्य हैं वो मिलके एक कार्यकारिणी का चयन करते हैं
0: जी।
1: वो कार्यकारिणी सभी कार्यों का संचालन करती है और उनको पूर्ण अधिकार होता है सब कार्य करने का।
0: अशोक जी, ये आप जो बातें बता रहे हैं, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है एक तरह से मानवता का प्रतीक है कि मानवता की सेवा के लिए ही बनाई गई है। अशोक जी, जिस तरह हर संस्था के कुछ सिद्धांत होते हैं, इस संस्था के भी कुछ सिद्धांत होंगे, वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: रेड क्रॉस सोसाइटी का आदर्श वाक्य है पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर। इस वाक्य में प्रमुख सिद्धांत है और इसके तहत कई सेवा कार्य किए जाते हैं। बूंदी शाखा के प्रमुख सेवा कार्यों में नंबर एक क्षुधा शांति प्रकल्प, जिसमें हम पिछले 19 वर्षों से प्रतिदिन ₹5 के नाम मात्र शुल्क पर स्वयं 70-80 या कभी 100 भी हो जाते हैं उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि कोई भूखा नहीं सोए और ₹5 देने से उसका अपना स्वाभिमान भी बना रहता है
0: जी।
1: इसके अलावा एक हम लोग पैथोलॉजी लैब चला रहे हैं आम जनता के लिए, उसका संचालन भी बिल्कुल लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है
0: जी।
1: और उसकी रेट जो बाजार से 40% है कुल
0: जी।
1: जैसे बाजार में जिसकी ₹10 लगी तो हमारे यहाँ उसका ₹4 ही लगेगा
0: जी।
1: और इस तरह से वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए दूसरा हम लोग पब्लिक वेयरफेयर के लिए मेडिकल कैंप्स लगाते हैं
0: जी।
1: आई कैंप्स लगाते हैं
0: जी।
1: और अब तक हमने लगभग 5,000 आई ऑपरेशन करवाए और एक भी उसमें फेल नहीं हुआ
0: जी।
1: ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, क्योंकि आई कैंप में फेलियर चांसेस रहते हैं
0: जी।
1: अभी तो जो नए नए आ गए हम लोग उनमें इंट्राओक्युलर लेंस लगवाते हैं, 4 घंटे बाद मरीज की छुट्टी भी दे दी जाती है। पहले शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था 1983 में, जब हमारी रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से तो आई कैम्प जो लगते थे वो सर्जिकल आई कैम्प लगते थे, 8-8 दिन तक पेशेंट भर्ती रहता था
0: जी।
1: तो 8 दिन तक पूरे पेशेंट की सार संभाल भी करते थे, दवा भी करते थे, सारा सब करते थे, पूरा ध्यान रखते थे, उसको काफी लंबा होता था
0: जी।
1: अब तो जो जो टेक्नोलॉजी आगे आते जा रही तो वो सब अच्छा होता जा रहा है अब तो। इस तरह से हमारे एक बूंदी में मोक्षरथ का संचालन करते हैं, बूंदी में एकमात्र मोक्षरथ है
0: जी।
1: वो हमारे पास ही, उसके कोई भी आके अपना एड्रेस बताया था मुझे इस समय इस जगह चाहिए, तो हम लोग उसको ₹100 हमें टोकन फीस हमने रखी है ताकि कोई उसका दुरुपयोग नहीं हो
0: जी।
1: उसके लिए हम लोगों ने वो कर रखा। अभी बूंदी शहर की आबादी भी बहुत बढ़ गई
0: जी।
1: है तो अधिकतर आबादी अब नैनवा रोड पे हो गई, उसको देखते हुए हमने मोटनदा रोड पे एक नया मुक्तिधाम का निर्माण कराया है और लगभग 8 साल पहले ₹30 लाख उसमें हमने रेड क्रॉस सोसाइटी ने खर्च किया था और वो मुक्तिधाम भी एक बहुत अच्छा नए तर्ज पे नई डिजाइन पे बनाया हुआ है, उसमें गार्डन भी है, बैठने की जगह भी काफी है और सारे सिस्टम पूरी सुविधा, माइक वगैरह, स्पीकर वगैरह, सारी सब सुविधा उसमें हमने उपलब्ध कराई है। उसके अलावा अपने देश में सरकार ने ये तय किया है कि 2030 तक टीबी मुक्त भारत की एक योजना,
0: अभियान।

0: चलाया है
1: उसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी हुई है
0: जी।
1: तो 2022 में उसके बारे में एक बार कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो पूरे देश की हुई थी। उसमें राजस्थान से चांस की बात है, मैं और एक अलवर से, हमारे दो ही लोग हम उसमें जुड़ पाए थे
0: जी।
1: बाकी और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि नई नई चीज थी, तो लोगों का ध्यान भी नहीं था
0: जी।
1: उसके बाद उसमें ये विषय ये आया था कि इनके मरीजों की सेवा करनी है, अपने अधिक से अधिक लाभ देने के लिए। सबसे पहला तो ये कि मरीज को पौष्टिक आहार मिले
0: जी,
1: ताकि उसको आहार, उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी तो बीमारी वैसे आधी ठीक हो जाएगी
0: जी।
1: आधी बाकी इलाज सरकार कर ही रही है, उसके लिए हमारे को एक पोषण किट का
0: जी
1: वो बनाया था, गवर्नमेंट से आया कि एक पोषण किट, उसमें कितना प्रोटीन युक्त जो आहार है, दलिया, दाल है, घी है, गुड़ है, इस तरह की एक कंपोजिशन आया था
0: जी।
1: पूरे देश में सबसे पहले हमने बूंदी शाखा में वो चालू किया
0: जी।
1: और आज तक चल रहा है, हर महीने कभी 50 कभी 60 कभी 100 कभी मरीजों को हम लोग वो उपलब्ध करा रहे हैं, जो वहाँ से जो टीबी हॉस्पिटल से लिस्ट आ जाती है उनको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और ये पोषण किट का कार्यक्रम लगातार चल रहा है।
0: अभी आपने बात की मोक्षरथ की, तो ये हमारे अधिकारों में भी है, अंतिम संस्कार जो हमारा अधिकार है वो भी सभी को अच्छे तरीके से मिले, तो ये काम भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बूंदी शहर में। और दूसरी बात कही आपने जो टीबी के मरीजों के लिए पोषण किट बांटने की, तो ये भी बहुत ही अच्छा नेक और सेवा का कार्य आपकी सोसाइटी कर रही है। आप बूंदी रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव है, तो वहाँ मरीजों को इमरजेंसी में अगर रक्त की जरूरत हो तो ये सोसाइटी कैसे मदद करती है?
1: ये रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना ब्लड बैंक तो नहीं है, क्योंकि एक ब्लड बैंक चलाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और बहुत आवश्यकता होती है
0: जी।
1: हम लोग लगातार रक्तदान शिविर लगाते हैं, हमारे कैंप जो कैंपस में हमारी बिल्डिंग है, अच्छा हॉल है, उसमें हमने पलंग वगैरह सब व्यवस्था रख रखी है
0: जी।
1: तो जब भी कोई आवश्यकता होती है तो हम जो रक्तदाता हमारे यहाँ जो देते हैं उन संस्थाओं से संपर्क करते हैं, भाई आपका डोनर कार्ड होगा तो आप इनको दिलाओ
0: जी।
1: फिर भी नहीं होता है तो उनके पास लिस्ट होती है, रेगुलर डोनर्स है, कई वॉलंटियर डोनर्स है, अपना नाम लिखा के जाते हैं, हम उनसे संपर्क करके और यथासंभव कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम लाभ पहुंचा सकें
0: जी। अशोक जी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेड क्रॉस सोसाइटी की सक्रियता है या यह सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित है?
1: नहीं, जिला मुख्यालय से तो हम लोग कार्य करते ही है, पर हमारा मुख्य उद्देश्य गाँवों की सेवा करना है
0: जी।
1: अभी जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले मानसून में मेज नदी में बाढ़ आई थी
0: जी,
1: और इतनी खड़खड़ एरिया में इतनी बाढ़ आई थी कि कई गांव डूब गए थे
0: जी,
1: उनके घर भी डूब गए थे, लोग बिल्कुल बेघर हो गए थे और उनको बाहर निकाल के सरकारी भवनों में ठहराया गया था। तो जैसे पानी उतरा तो उनके जगह पे मकान बनाने के लिए सरकार ने मदद करी, हम लोगों ने उनको देने के उपयोग की चीजें, साबुन, तेल, पानी, कंबल, त्रिपाल, भोजन सामग्री, हमने राशन किट भी दी उनको, 15-15 दिन का राशन किट पूरा बना के दिया। तो इस तरह कई चीजें हम लोग गाँव में करते हैं, जैसे स्कूल में हमारा, स्कूलों में बच्चों को हम देते हैं बैग्स, देते हैं कपड़े, देते हैं और देते हैं, तो हमारा टारगेट ये रहता है कि गांव में ही दें, शहर में तो बहुत लोग करते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए हमारा अभी टारगेट, जैसे भी अभी हम लोगों ने बैग बांटे थे 3,000 बैग, स्कूल बैग्स
0: जी,
1: वो 90% बैग्स गांव में दिए
0: जी।
1: तो इस तरह से गांव में भी हमारा पूरा फोकस रहता है।
0: अशोक जी, अगर कोई आम नागरिक इस संस्था का सदस्य बनना चाहे तो वो कैसे इस संस्था से जुड़ सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है?
1: इसमें हमारे यहाँ कोई पात्रता के ऐसा कोई मापदंड नहीं है
0: जी,
1: कोई भी आम नागरिक सदस्य बन सकता है, और सदस्य शुल्क भी केवल 1,000 रुपया है जो आजीवन सदस्यता है
0: जी,
1: तो कोई विशेष बात नहीं है। पर अभी क्या था कि लास्ट दिसंबर 2024
0: जी
1: हम लोगों ने सदस्यता आमंत्रित की थी, लगभग 700 नए सदस्य बने, तो इस तरह से पहले 125 सदस्य पहले थे
0: जी,
1: तो इस तरह से सदस्य हैं वो मदद करते रहते हैं, उनमें से कुछ लोग आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में काम, तो इस तरह से चलता रहता है
0: जी। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अन्य विभागों के साथ रेड क्रॉस कैसे आमजन के लिए कार्य करती है?
1: हमारे क्या है, स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा हम लोग संपर्क में रहते हैं, हम लोग भी, हमारी भी प्रायोरिटी वही रहती है। तो जैसे जनरल हॉस्पिटल में इनको जो भी आवश्यकता होती है, किट्स की आवश्यकता होती है, जैसे इक्विपमेंट जो लास्ट ईयर हमने उनको एसी और कूलर की बहुत सख्त आवश्यकता थी, हमने दिए
0: जी।
1: उसके अलावा सबसे पहले जो हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ था ब्लड बैंक जो स्टार्ट हुआ था, उसका हमारे फ्रिज से स्टार्ट हुआ
0: जी।
1: था, उसके बाद हमने उनको मॉनिटर्स भी दिए, हार्ट मॉनिटर वगैरह सारे सब हम लोग जो भी साधन उनकी आवश्यकता होती है उपलब्ध कराते हैं। और आज रेडक्रॉस दिवस पे उनके जो नशा मुक्ति केंद्र है वो दवाओं के अभाव में बंद पड़ा हुआ है
0: जी
1: उसके हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए के लिए दवाएं और सिरिंज वगैरह मांगा के आज हम उनको भेंट कर रहे हैं।
0: जी अशोक जी, आने वाले समय में बूंदी जिले की रेडक्रॉस सोसाइटी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हो जो आपके लिए प्राथमिकता रखती है?
1: हमारी बिल्कुल अभी लेटेस्ट प्राथमिकता ये है कि हम लोग एक CPR जो होती है
0: जी,
1: आप भी जानते हैं किसी भी हार्ट अटैक आया कुछ भी आया तो उसको

0: सीपीआर की तरह उसको वापस पुनर्जीवित भी किया जा सकता है और ऐसा कई केसेस हुए हैं। तो आम जनता के लिए हम लोग एक क्लासेस लगाने वाले हैं रेड क्रॉस बोन हॉस्पिटल कंपाउंड में, हमारी जो बिल्डिंग है हर सप्ताह में एक घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी हम लोग देंगे और सीपीआर भी देंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे और थ्योरेटिकल और टीवी के माध्यम से पूरा उनको जानकारी देंगे कैसे सीपीआर से आप किसी की जान बचा सकते हैं। क्या उसके अलावा फर्स्ट एड में मान लो किसी की चोट लगी, हाथ टूट गया तो उसको क्या करना चाहिए, बैंडेज बांधनी है तो कहाँ बांधनी है, कैसे बांधनी है, ताकि वो आदमी क्या है कि कोई भी हो तो अधिक से अधिक जो नागरिक हैं उनको इसकी जानकारी मिले। और दूसरा यही चीज हम लोग स्कूलों में भी करना चाह रहे हैं, हर जितने भी बड़े स्कूल हैं पूरे जिले के उनमें हम लोग एक बार जाके और इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी वहाँ स्कूलों में भी चलाएंगे एक घंटे दो घंटे का, जहाँ जैसा भी यथासंभव होगा, तो उनके बच्चों को भी शुरू से ही जानकारी हो कि फर्स्ट एड कैसे होती है, क्या होता है, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है।
1: जी, बहुत ही नेक कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। अशोक जी, आपने रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता और आमजन भी इस संस्था से मिलने वाले लाभों का जरूर लाभ उठाएंगे और सस्ती दरों पर अपना चिकित्सकीय जांच जरूर करवा पाएंगे। अशोक जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुला के और मुझे बात कहने का मौका दिया ताकि आमजन को भी रेड क्रॉस के बारे में जानकारी मिली और यथासंभव उनका लाभ उठाने की प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सखियों, आंगनबाड़ी नाम तो हम सबने सुन ही रखा है। इस केंद्र पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें पहली सुविधा है पूरक पोषण। इसमें 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जो माँ बन चुकी हैं, उनको पौष्टिक आहार, गर्म पका हुआ भोजन या नाश्ता दिया जाता है। दूसरी सुविधा में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोलियो, खसरा जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। तीसरी है स्वास्थ्य जांच। इसमें बच्चों का वजन और विकास की निगरानी गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच की जाती है। चौथी सुविधा है प्री स्कूल शिक्षा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। और पांचवी सुविधा है रेफरल सेवाएं, जिसमें गंभीर कुपोषित बच्चों या जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल रेफर किया जाता है। छठी सुविधा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें माताओं को शिशु आहार, साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करवाया जाता है। और सखियों, ये तो रही आज की जानकारी, लेकिन इस जानकारी के बाद हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, क्योंकि गीत संगीत जो है हर मर्ज की दवा है और उस दवा से हम सभी को राहत मिलती है। नजर से दूर रहकर भी तुम दिल के पास रहते हो, नजर से दूर रहकर भी तुम दिल के पास रहते हो, सीने में दिल नहीं धड़कता, तुम धड़कनों के एहसास में रहते हो।

सखियों, बातें तो और भी करनी है बहुत, लेकिन समय की नजाकत है कि आपसे विदा ली जाए। आप अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता को इजाजत। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: विविध भारती कहते हैं, वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है। जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारे रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो, सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता है?
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं, जो वो अपना मन चाहेगी, जो अपने पत्रों पे आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को
0: जी
1: 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, इतना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी।
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ऐ हसीनो।
0: सुनो ऐ हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथ बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, खेती बाड़ी करता हूँ और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है।
0: जी
1: भी है।
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं, अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं। देखिए आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें।
0: ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मधुशाला में ताला न पड़ जाए।
1: हेलो फरमाइश
2: जी, हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: रामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
1: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
2: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
1: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
2: आरबीआई के। हम सीएससी रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आज कल।
1: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है?
2: जी मैम।
1: अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
2: जी।
1: चलिए ये बताइए, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
2: जी हमको सुनना है अखियों की झरोखों से खिलूं के, हेमलता की आवाज़।
1: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैडम जी,
0: रामेश्वर जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती का काम निपट गया है।
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: अषाढ़ आएगा ना मैडम, जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की।
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप?
1: मैडम जी ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ नहीं।
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीतमाला था, सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है, और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले, या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है। तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम
0: जी, तो ये तो था यूं ही ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम।
0: अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी पड़ोसन फिल्म का है, चतुर करके सिंगार।
0: तो चलिए रामेश्वर जी आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन

0: 생각.
1: 담.
2: 아요.
1: 담.
2: 나.
1: 아래 담. 담. 담. 록. 야.

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जेलागोना मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा।
0: आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे दादाजी होंगे तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
1: जी मैम, जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का।
0: अच्छा अच्छा,
1: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गांव में, सब किसान ही है।
0: इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
1: हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
0: क्या बात है, तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाए।
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं। मैम आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, है जो हेलो फरमाइश है, साकी सहेली है।
0: पसंद आता है आपको कार्यक्रम?
1: जी जी मैम आता है।
0: क्या बात है, चलिए ये बताइए राजकुमार जी कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना आया परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए राजकुमार जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नेहा जी, मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी। 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से।
0: अच्छा,
1: और मैं विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ।
0: अच्छा
1: जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पहले भी जो प्रोग्राम आते थे, आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती।
0: क्या बात है। तो इन बदलावों के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव?
1: हाँ, बहुत अच्छा है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है।
0: जी, तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर बात बदलती जाती है।
1: बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है।
0: जी बिल्कुल, स्वीकार करना जरूरी है।
1: हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल लगना बोले तो बिल्कुल एक चांद को छूले नहीं जैसी कामयाबी है। मैं भी 2 सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत, धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: अच्छा, क्या आप गाते भी हैं?
1: नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं।
0: तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा।
0: क्या बात है शेर खान जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यानी कि श्रोता और विविध भारती परिवार का प्यार भी हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैडम, मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। उसमें जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं। ये जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सर्कल है, सेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद सुवाद ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से।
0: यानी कि ठंड के दिनों में?
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टी पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता है विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते हैं मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बिल्कुल पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम।
0: जी ये बिल्कुल सही बात है,
1: और हमको विविध भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
0: जी और
1: गाने के बोल है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
0: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।
1: और मैडम इस गाने को

0: हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति बारे भी सुनना चाहेगी।
1: बिल्कुल, तो आपको और हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।
2: ओ ठंडे ठंडे पानी से नहा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोलो। नेहा जी
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर में ना धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडो घूम चुकी हूँ। जी जी जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी जब हम मांडो महेश्वर मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे। जी तस्लीम जी ये बताइए आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं?
1: जी जी कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ।
0: तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
1: जी जी और ये अपना SMS के बहाने यूएस के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
0: ओ ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं।
0: जी
1: बराबर मालूम भी नहीं है, वो ज्ञापन सुना करते थे वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर।
0: जी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं

0: है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है।
1: जी नहीं मैं सुनता हूँ, शुरू सुबह 8 बजे से तो रात चक्की फ्लोर में चला करती है, 9-10 भी बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं।
0: क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: 2 अक्टूबर की मैं गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ना शराब, हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: जाना मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओहो, डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है।
1: सतीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या बात है,
1: नहीं लगता तो आपको फोन लगाते हैं।
0: ओहो, क्या बात है क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने। हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी।
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गहरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी है शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी।
0: अच्छा अच्छा जी, और क्या करते हैं आप
1: जी? मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को।
0: तंग करते हैं घर वालों को?
1: फ्री है जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: हो गया ना।
0: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे।
1: कहते दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, और आज टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी वो, देखो मुझसे रूट कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा।
0: ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैडम पंजाबी में सुना।

0: दो हिंदी वाला
1: कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: पंजाबी में सुनाता हूँ आपको।
1: बिल्कुल।
0: ठंडा हो जाओ चूल्हा चौंका बेड़ा सुनम सुना दस जा किंज दाल बनावा किंज आटा गुन्ना उन्हें नहीं याद आऊगी। ओए होए मैं क्या नहीं जदों मैं क्या नहीं जदों टूर जाएंगी वो पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जूस कैन पे लगाए।
1: बिल्कुल।
0: और जानवरों को दाना डाले गर्मी है अपने कोठों पे वो कटोरे रखे उनको अपने पानी और दाना झूल डाले।
1: क्या बात है बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। चलिए सतीश जी फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है वो देखो मुझसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ उनको गाइडिंग कर रहा हूँ।
0: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
1: हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपसे बात करने में बहुत टाइम हो गया, तो सोचा आज विजिट भारती के हेलो फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूँ और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूँ।
0: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट है वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
1: नहीं नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शमी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा डल झील के अंदर शूट किया था, चांद सा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं, कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे।

0: बात करने का।
1: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा ये बताइए कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
0: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है
1: जी,
0: मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है।
1: अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग लोग मिलते होंगे या फिर कुछ अनुभव आते होंगे, कोई अच्छा सा किस्सा किसी टूरिस्ट के साथ हुआ हो तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे, जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनसे हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होके वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ, उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे। अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

0: श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने, 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना, शुभा मुद्गल की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गीत, संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना,

0: जी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।

0: पंकज उदास की आवाज आपने सुनी। शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: सुन रहे हैं विविध
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे का समय है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।

0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है, और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है,
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया।

0: रहा है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: এর মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी।

प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया।

0: ओ माँ, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेत

0: शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ के कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल इस कार्यक्रम

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तेरे पैर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: भाई
1: क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
0: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
1: माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: साथ है फिर साथ अकेली लड़की, फिर साथ अकेली लड़की, दिल कैसे कोई संभाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी AI के

0: जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान एआई समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रही कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं, ये आप हमें बताइए।

छाता पकड़ फेरे लिए थे, जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था। मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले खत्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं जबरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई। वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीजें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा, तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्र हार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं, तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह के बाद छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मजेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सबने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, बजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को सात जन्मों का बंधन माना जाता है जो इसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है।

तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत खराब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मजा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठाकर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं।

नील कमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियां खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर

0: हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों, ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधी आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए, ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न चार बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जय घोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्ध घोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल

0: पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी, किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधें। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
1: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगाल वासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
0: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ।

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई, अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।

प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है, इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को 5 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि

वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीति के इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है।

0: कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
3: माइग्रेशन पाथ।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बात

0: बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई

0: फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय

वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा शाम होने आई।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें?

0: तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं, और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में,
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा, तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है, घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही,
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है, तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन है।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है, और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इससे ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना सही।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन रहा।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सिंगारिया लग मिलाए नजरिया है नशा जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठू पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती हैं हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियां भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ,
1: और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 45 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनती रही मैं
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले से आवाज में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।
2: पान

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही

0: एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पर्षवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ, कुछ आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है।
1: शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
0: सीख रही हैं
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात आपने,
1: कुछ भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है, दीपा जी मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है,
1: वो जैसे बोलती थी ताई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: तो अपूर्णता है थोड़ा, तो है तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन सिग्दा दिक दिक थई, तत तत थुन थुन सिग्दा दिक दिक थई, सिग्दा दिक दिक थई, सिग्दा दिक दिक थई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है, और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: और आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मूल जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी
0: जी वो बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: अच्छा सा और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत पे ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है भैंस भैंस है।
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी, तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का
1: उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके,
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता होगा?
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध कर खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तो कितनी अच्छी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा जी, जी क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: बोल के बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए। हाँ, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम रतन तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं, जैसे

सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गई। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई।

आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई।

रही थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर

रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए।

चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरसते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी मेरी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये, पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं

इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था। नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ

कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सायंकाल के 5 बजे हैं।

0: कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो दिल में घर बना लेती हैं।
1: कुछ सपने सिर्फ रातों में नहीं आते, वो आँख खुलने के बाद भी जीने की वजह बन जाते हैं।
0: आज का युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो नई सोच है, नई उम्मीद है और बदलते भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।
1: कभी किताबों के पन्नों में, कभी संघर्षों की राहों में, तो कभी अपनी छोटी सी कोशिशों में हर युवा लिख रहा है एक नई कहानी।
0: और उन्हीं कहानियों, उन्हीं जज्बातों और उन्हीं सपनों को आवाज देने आ गया है आपका अपना कार्यक्रम युववाणी,
1: जहां बातें होंगी दिल से, मिलेंगी प्रेरणा हर पल से और हर एहसास जुड़ेगा आपसे।
0: तो अपने सपनों की धड़कनों को थोड़ा और तेज कर लीजिए,
1: क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा सफर जहां आपकी सोच ही आपकी पहचान बनेगी। तो दोस्तों, आज आपसे रूबरू हो रही हैं आपकी दो रेडियो दोस्त। मैं आपकी रेडियो दोस्त लक्षिता,
0: और मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका,
1: और हम दोनों की तरफ से आप सभी को सम्मान भरा, प्यार भरा नमस्कार। तो इशिका बताओ, कैसी हो तुम?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ लक्षिता, तुम बताओ?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और हम आशा करते हैं कि हमारे दोस्त भी काफी ठीक होंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस प्यारी सी शाम में आज जहाँ हम मिले हैं, इस शाम को और खूबसूरत बनाते हैं और ले चलते हैं हमारे दोस्तों को एक ऐसी सफर पर जहाँ चलकर उन्हें भी मजा आएगा और हमें भी आनंद मिलेगा। क्या कहती हो?
0: बिल्कुल, तो चलो ले चलते हैं हमारे दोस्तों को गीत संगीत की दुनिया में,
1: और ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं हमारे दोस्तों को, क्योंकि उनके आ जाने से शाम और भी खुशनुमा बन जाती है। तो ये सॉन्ग हमारे दोस्तों के लिए।

बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में, जहां आज आपसे रूबरू हो रही हैं आपकी दो रेडियो दोस्त, मैं लक्षिता
1: और मैं ऐशिका।
0: तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, वो आवाज जिसने 9 दशकों से भारत की धड़कनों को शब्द दिए हैं,
1: वो माध्यम जिसने कभी खेतों की मिट्टी की खुशबू सुनाई तो कभी सरहद पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ाया,
0: वो साथी जिसने हर घर, हर गांव, हर दिल तक अपनी पहुंच बनाई। तो आइए आज बात करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली सफर के बारे में।
1: दोस्तों, 8 जून 1936 भारतीय प्रसारण के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर रखा गया था ऑल इंडिया रेडियो।
0: और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने समय के साथ केवल तकनीक ही नहीं बल्कि भावनाएं भी जोड़ी।
1: और सन 1939 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे आकाशवाणी का नाम दिया था।
0: आकाशवाणी, एक ऐसा नाम जिसमें आसमान की विशालता भी है और वाणी की आत्मीयता भी है, ना शिका?
1: बिल्कुल, आकाशवाणी केवल समाचारों का माध्यम ही नहीं बल्कि ये देश की संस्कृति, संगीत और संवेदनाओं की संरक्षक भी है।
0: 1952 में राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को हर घर तक पहुंचाया।
1: और साथ ही 16 दिसंबर 1941 को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सुरीली आवाज देश के श्रोताओं तक पहुंची।
0: क्या बात है, इस पहली रेडियो प्रस्तुति में उन्होंने 2 मराठी नाट्य गीत पेश किए जो उनके ऐतिहासिक संगीत सफर की आधारशिला बनी।
1: और उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रम जयमाला का संचालन भी किया था।
0: दोस्तों, आकाशवाणी के साथ उनका ये जुड़ाव आज भी एक स्वर्णिम स्मृति के रूप में याद किया जाता है।
1: और दोस्तों, वो दौर जब बड़े बड़े उस्तादों की आवाज रेडियो के माध्यम से सीधे दिलों तक उतरती थी, और लक्षिता पता है तब लोग रात भर रेडियो से कान लगाए बैठे रहते थे।
0: क्या बात है शिका, और उन लोगों का वही इंतजार कहीं ना कहीं आकाशवाणी के लिए एक अटूट विश्वास था और कह सकते हैं आज भी है।
1: बिल्कुल, और फिर एक दिन 12 नवंबर 1947 को देश विभाजन की पीड़ा से गुजर रहा था, और ऐसे कठिन समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से विस्थापितों को संबोधित किया।
0: और यकीन मानिए दोस्तों, वो आवाज केवल शब्द नहीं थी बल्कि टूटे हुए दिलों के लिए एक मरहम थी।
1: और आकाशवाणी ने हमेशा भारत की विविधता को अपनाया है, और 15 अप्रैल 1953 को लखनऊ से हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन शुरू भी हुए, और ये एक नई क्रांति थी। अब हर भाषा, हर बोली और हर क्षेत्र को अपनी आवाज मिलने लगी थी।
0: 1 जुलाई 1948 को पूर्वोत्तर भारत में पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई, और इसके साथ ही देश का वो हिस्सा भी आकाशवाणी की तरंगों से जुड़ गया।
1: और आकाशवाणी ने केवल शहरों को नहीं बल्कि दूर दराज गांवों, पहाड़ों और सीमाओं को भी एक सूत्र में बांधा।
0: साल 1923 जब एक छोटे से ट्रांसमीटर से भारत में रेडियो के सफर की शुरुआत हुई,
1: और जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने भारत में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया। बॉम्बे के कोलाबा में स्थित इस रेडियो क्लब ने एक छोटे और सीमित क्षमता वाले ट्रांसमीटर के माध्यम से यह ऐतिहासिक प्रसारण किया, जिसने देश में ब्रॉडकास्टिंग की नींव रखी।

0: वो दौर था दोस्तों जब संचार के माध्यम से मुख्यतः तारों और केबल तक ही सीमित थे। ऐसे समय में रेडियो का ये प्रयोग एक नई क्रांति का संकेत था, जहां आवाजें बिना किसी तार के हवा के जरिए लोगों तक पहुंचने लगी थी।
1: और दोस्तों ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत में प्रसारण के भविष्य के आधारशिला रखने वाला एक ऐतिहासिक कदम भी था।
0: जी हाँ दोस्तों,
1: और ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच और विश्वसनीयता देश के साथ विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही थी।
0: 1941 में अहमद शाह बुखारी की महानिदेशक के रूप में नियुक्ति से नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी आया।
1: उन्होंने 1941 से 1947 तक ऑल इंडिया रेडियो में अपनी सेवाएं दी और लॉयनन फील्डन के बाद ये जिम्मेदारी संभाली। वे एक शिक्षाविद, लेखक और कुशल प्रसारक थे, जो पत्रस बुखारी के नाम से भी प्रसिद्ध थे।
0: दोस्तों 90 वर्षों का ये सफर सिर्फ समय की यात्रा नहीं है, बल्कि विश्वास, संस्कृति और जनसेवा की कहानी है।
1: ट्रांजिस्टर से केवल डिजिटल युग तक आकाशवाणी ने हर दौर में खुद को बदला है, लेकिन इसकी आत्मा वही रही, जन जन की आवाज बनना।
0: दोस्तों आज अब आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तो ये केवल एक संस्थान का उत्सव नहीं, बल्कि उन करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं का उत्सव है जिन्होंने इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है।
1: और दोस्तों यही सफर हमें सिखाता है कि सच्ची आवाज वही होती है जो दिलों को जोड़ दे।
0: इन्हीं भावनाओं के साथ आकाशवाणी के इस ऐतिहासिक सफर को हम सभी का प्यार भरा सलाम,
1: और हम सब दोस्तों कामना करते हैं कि इसकी मधुर आवाज यूं ही आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे।
0: फिलहाल शिका आइए चलते हैं, एक बार फिर हमारे दोस्तों को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, सुनवाते हैं आज की शाम का ये एक और प्यारा गीत।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट विश्व पटल से की ओर।
1: दोस्तों, अगर आप लंदन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी, घड़ी की वो मशहूर आवाज टिक टॉक और एक शानदार टावर, और यही है बिग बैन।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, बिग बैन असल में पूरे टावर का नाम नहीं है। ये नाम सिर्फ उसकी सबसे बड़ी बेल को दिया गया था, पर वक्त के साथ लोग पूरे क्लॉक टावर को ही बिग बैन कहने लग गए।
1: बिल्कुल सही बताया तुमने इशिका। इस टावर का कम्प्लीशन 1859 में पूरा हुआ था दोस्तों, और 31 मई 1859 को इसकी बेल फर्स्ट टाइम रिंग हुई थी, और तभी से ये लंदन की पहचान बन गया है।
0: और दोस्तों, इसकी हाइट लगभग 96 मीटर है। इसमें 334 सीढ़ियां हैं। इसके चारों तरफ लगी घड़ी इतनी बड़ी है कि हर डायल का व्यास करीब 23 फीट है, यानी दूर से भी साफ दिखाई देता है।
1: दोस्तों, बिग बैन लंदन के वेस्ट मिंस्टर इलाके में संसद भवन के पास स्थित है और ब्रिटिश लोकतंत्र का एक मजबूत प्रतीक माना जाता है।
0: और एक और मजेदार बात, ये टावर हल्का सा झुक रहा है, लगभग मिलीमीटर प्रति वर्ष, ठीक वैसे ही जैसे पीसा की मीनारें।
1: बिग बैन सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि इतिहास, समय और परंपरा की एक जीवित पहचान है दोस्तों, जो आज भी लंदन की धड़कन बनकर बजता है।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जहां जोश है, जुनून है और हर पल कुछ नया करने का हौसला है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं खेल गतिविधियों पर।
1: IPL 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। BCCI ने प्ले ऑफ मुकाबलों का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है और इस बार फाइनल्स के मुकाबले

0: को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को खेला जाएगा।
1: दोस्तों, हाल ही में खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। मिचेल मार्श की शानदार शतकीय पारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह बन गई है।
0: और दोस्तों, साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में बॉलिंग करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस में काफी खुशी है।
1: वहीं दूसरी ओर बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों की मेहनत और आत्मविश्वास देश के खेल भविष्य को मजबूत

0: वहीं दूसरी ओर बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों की मेहनत और आत्मविश्वास देश के खेल भविष्य को मजबूत बना रहे हैं।
1: और दोस्तों, साथ ही दुनिया भर में फुटबॉल मुकाबलों का रोमांच जारी है। क्लब फुटबॉल में बड़े मुकाबलों को लेकर फैंस में जबरदस्त खुशी की लहर है।
0: इशिका, काफी सारी जानकारी हम दे चुके हैं, तो अब कुछ कमी सी लग रही है, वो कमी क्या है?
1: कमी है कुछ मनोरंजन की,
0: थोड़े से एंटरटेनमेंट की। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आपको ये प्यारा गीत जो आज इशिका का मन था काफी सुनने का, तो ये गाना मैं इशिका को डेडिकेट करती हूँ। ये गाना तुम्हारे लिए।
1: क्या बात है।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: और दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद अब वक्त हो गया है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे चटपटी फिल्मी गॉसिप्स के बारे में।
1: दोस्तों आज बात होगी बॉलीवुड के सितारों की और उनके दिलचस्प किस्सों की, इसीलिए ले चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट फिल्मी गॉसिप की ओर। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारी गॉसिप्स आपके पास आने वाली है।

0: दोस्तों, आजकल बॉलीवुड सितारों की सुबह चाय से कम और सोशल मीडिया से ज्यादा शुरू होती है. कौन किसकी पोस्ट लाइक कर रहा है, कौन किसे अनफॉलो कर रहा है. फैंस हर छोटी बात पर नजर रखते हैं.
1: दोस्तों, एक नई बात आपको अगर मैं बताऊं तो बात कुछ ऐसी है कि अब फिल्मों में सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि कहानी भी सुपरस्टार बन चुकी है. छोटे बजट की दमदार फिल्में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं और ऑडियंस भी अब सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि अच्छी कहानी और दिल को छू लेने वाली एक्टिंग देखना पसंद कर रही है.
0: और वहीं दोस्तों, आज की नई फिल्मों में पुराने गानों का रिमिक्स खूब सुनने को मिल रहा है. लेकिन लोगों के दिल में आज भी किशोर कुमार, लता जी और मोहम्मद रफी के गानों की वही मिठास बरकरार है.
1: क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरग्रीन हमेशा एवरग्रीन होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: दोस्तों, वहीं बॉलीवुड स्टार्स की फिटनेस देखकर कई लोग सोचते हैं आखिर ये खाते क्या हैं. तो जनाब, आपको बता दें कि घंटों की जिम में मेहनत, स्ट्रिक्ट डाइट और ढेर सारी एक्सरसाइज के बाद मिलता है ये फिल्मी ग्लो.
0: और दोस्तों, अगर आपको भी ये फिल्मी ग्लो चाहिए आपके फेस पे तो आप सबको भी ये नियम फॉलो जरूर करने होंगे.

0: दोस्तों, ये सफर इतना प्यारा है कि बातें करते करते समय का पता नहीं चलता। और आइए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे प्यारे से टॉपिक की तरफ जिसमें आज हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ रुक सा गया है, मेहनत हो रही है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है।
1: लेकिन याद रखिए, पेड़ भी सबसे पहले जड़ें मजबूत करता है, फल बाद में देता है। और आज जो संघर्ष है वही कल आपकी ताकत जरूर बनेगा।
0: बिल्कुल सही बात कही तुमने शिका। अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। देखिए, सूरज भी उगने से पहले अंधेरे से लड़ता है।
1: और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया तब मानती है जब आप खुद को मानना शुरू करते हैं।
0: देखिए, हर सुबह एक नया मौका है, हर सुबह एक नई कहानी है, एक नया दिन है। तो पुरानी हार को क्यों ना हम पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, एक नई पॉजिटिविटी के साथ और एक नए मन के साथ।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और अपने सपनों को कभी छोड़ेंगे नहीं।
0: कितनी प्यारी बात है ना, क्योंकि अक्सर हम मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर, एक इनसिक्योरिटी जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमें परेशान करती है और हम काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं।
1: और हो सकता है कि हम सफल ही होने वाले हो जरूर से, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। और उम्मीद है कि हमारे सभी दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता होगा,
0: क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सेल्फ डाउट काफी जल्दी करते हैं। खुद में जो कमियां हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम खुद की कमियां देखते हैं और फिर खुद से थोड़ी सी घृणा करने लग जाते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो ये चीजें गलत है। देखिए, मेरा एक मूल मंत्र जिसे कहते हैं कि जब मन खराब हो तो क्या करें, खुद को शाबाशी दें कि वाह यार वाह। अभी जैसे कभी मेरा मन खराब होता है तो मैं खुद को ऐसे मोटिवेट करती हूँ कि नहीं लक्षिता, तुझमें कुछ बात है यार, तू अच्छा कर सकती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा लक्षिता तुमने, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको मोटिवेट करने के लिए आपके साथ कोई हो। जिंदगी में आपके कुछ पल ऐसे भी आ सकते हैं जब आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन तब आपको खुद की ताकत खुद ही बनना पड़ेगा।
0: देखिए, क्योंकि दुनिया में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए या आप किस चीज से परेशान है।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढ लेंगे तो इस दुनिया की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद के लिए इतनी ज्यादा कैपेबल हो जाइए कि खुद को मोटिवेट करें। और अगर आप ट्राई करें ये जो नुस्खा मैंने अभी बताया, तो ये आपके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मैंने यूज किया है, इसके बाद ही

0: होता है, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वही वाली बात है। क्योंकि दोस्तों जीत उन्हीं की होती है जो
1: बार बार गिर कर भी उठना जानते हैं।
0: तो इसीलिए कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग और हमेशा
1: खुश रहिए।
0: बिल्कुल।
1: वैसे लक्षिता, तुमने अभी दोस्तों से बोला कि मेरी पसंद का गाना तुमने सुनाया,
0: ओ,
1: मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
0: मुझे लगा तुम भूल गई, तुमने मुझे कुछ क्रेडिट ही नहीं दिया।
1: नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी पसंद का गाना मुझे सुनाया।
0: वेलकम, वेलकम।
1: लेकिन अगर अब तुमने दोस्तों को मेरी पसंद का गाना सुनाई दिया है तो तुम्हारी बारी भी जरूर आनी चाहिए।
0: ओह माय गॉड, सच बताओ?
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए,
1: तो चलो दोस्तों को सुनाते हैं लक्षिता की पसंद का गाना।
0: देखिए पसंद के तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ये वाला जो गाना है अभी मूड के हिसाब से, जॉनरा के हिसाब से मेरे माइंड में काफी चल रहा है, तो थोड़ा हम भी इस पे वाइब करते हैं शिखा, और हमारे दोस्तों को भी करवाते हैं।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कि कौन सा गाना लक्षिता को बेहद पसंद है।
0: चलिए

0: थैंक यू सो मच अशिका, इतना प्यारा सॉन्ग प्ले करने के लिए मेरी एनर्जी बिल्कुल बूस्ट हो गई, मुझे मजा आ गया।
1: और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के साथ भी यही हुआ होगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारी पसंद और उनकी पसंद तो मिलती जुलती है। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉलेज कॉर्नर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मानवता सेवा और करुणा के उस संदेश की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ है।
1: दोस्तों, हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डेउना की जयंती के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस संस्था का मुख्य उद्देश्य है संकट के समय बिना किसी भेदभाव के मानव सेवा करना।
0: ये कितनी अच्छी बात है कि जब भी कोई प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो, तो हमें ना ही जाति देखनी चाहिए, ना रूप रंग, ना कुछ भी, बिना देखे, बिना किसी भेदभाव के हमें मदद करनी चाहिए। देखिए, ये किसी योजना का ही नहीं, बल्कि किसी दिवस का ही नहीं, बल्कि हम सभी का क्या फर्ज होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं हो, युद्ध की स्थिति हो, महामारी हो, या सड़क दुर्घटनाएं हो, रेड क्रॉस के स्वयं सेवक हर परिस्थिति में सहायता के लिए आगे आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
1: और साथ ही रक्तदान शिविर, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जैसे कार्य समाज में नई उम्मीद भी जगाते हैं।
0: दोस्तों, आज के समय में जब मानवता कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब रेड क्रॉस का संदेश हमें एक दूसरे की मदद करने और संवेदनशील बनने की प्रेरणा भी देता है।
1: इसलिए दोस्तों, आइए इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि जरूरतमंद की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और मानवता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानेंगे।

दोस्तों, अब नॉलेज कॉर्नर में हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। यह अभियान सड़क

0: दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: और दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की होती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं है, बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प भी है। दोस्तों
0: देखिए, दोस्तों ये जो अपनी जिंदगी है, ये अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस चीज को अलर्ट होकर नहीं समझेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, किसी और का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, सब कुछ आपका है। अगर आपको कुछ होता है तो आपके आसपास आपके परिवार वाले वही परेशान होंगे, इसलिए हमें खुद की सुरक्षा पहले करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल चीजों का हमें ध्यान रखना है, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। सड़क पर वाहन चलाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है, जैसा कि अभी इशिका ने आपको बताया। तेज गति, मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर वाहन चलाना और यातायात नियमों की अनदेखी करना सभी गलत है।
1: और दोस्तों ये सभी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करें तथा पैदल यात्रियों का भी सम्मान करें।
0: बिल्कुल, जैसे कई बार होता है कि लोगों को फोन आ जाता है गाड़ी चलाते वक्त और वो उठा लेते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपका ध्यान जब फोन पर होता है तब आपका ध्यान गाड़ी को चलाने में फोकस पे नहीं रह पाता।
1: बिल्कुल,
0: और तभी ज्यादातर हादसे होते हैं,
1: क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारा जो फोकस है वो एक ही जगह
0: बेहतर
1: हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने,
1: अगर हम दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा।
0: कहते हैं ना, दो नाव में सवार नहीं हो सकते, एक वरना दोनों ही डूब जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है लक्षिता कि जैसे ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान पे जब तक बीतती नहीं है ना,
0: तब तक
1: समझ नहीं आती है। और मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि वो इस बीतने का इंतजार ना करें और इन बातों के प्रति बहुत जागरूक रहें, क्योंकि होता है ना कि जब तक हमें, जैसे फोन वाली बात तुमने कही, मुझे अच्छे से याद है कि एक बार तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था।
0: मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ से फोन छीन कर ले गए थे चोर तो ये भी एक दुर्घटना ही है।
1: बिल्कुल,
0: मेरा लॉस हो गया था, मेरा फोन छीन कर ले गए, हालांकि मेरे हेलमेट भी लग रहा था लेकिन हाथ में था फोन, एक्चुअली फोन आ रहा था और जस्ट मैंने देखा और उतने में वो लोग छीन कर लेगा।
1: बिल्कुल, तो इसमें तुम्हारी कमी थी कि तुम गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात कर रही
0: और
1: थी।
0: तब से दोस्तों मैंने प्रण लिया है कि मैं बिना हेलमेट के कहीं नहीं जाती हूँ, तो मैं आप सभी को भी यही बताऊंगी, क्योंकि मैं करती हूँ इसीलिए मैं आप सभी को बोल सकती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: और जो नहीं करते वो समझाने का भी कोई हुनर नहीं रखते, क्योंकि पहले खुद करना सीखिए उसके बाद समझाना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और लक्षिता तुमने कभी ध्यान दिया है कि हमारे जो दोस्त हैं या फिर हम खुद के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम हेलमेट यूज नहीं करते थे उसके पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, अगर वो हमें गलती से रोड पे दिख जाए तो हम उन्हें देख के भागने लगते हैं।
0: और अभी भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं,
1: हम उन्हें देख के भागने लगते हैं जैसे वो हमें जबरदस्ती रोक रहे हैं। लेकिन मैं दोस्तों को यही कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमें रोक रहे हैं वहां पे, अगर हमें, हमारा चालान बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हमारा ही फायदा है। अगर वो एक बार रोकेंगे तो अगली बार हम याद रखेंगे, और वो हमारी सुरक्षा के लिए ही हमें रोकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख के भागने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है।
0: भाई
1: वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और लोगों की यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अक्सर वो खुद का ध्यान नहीं रखते और जैसे कोई भूत को देख लेता है वैसे लोग उनको देख देख कर भागते हैं। मैंने खुद ने भी बहुत बार ये चीजें नोटिस करी, और अभी काफी समय से मैं हेलमेट लगाती हूँ और रेगुलरली लगाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, चाहे पास के चौराहे पर ही क्यों ना जाना हो, क्योंकि दुर्घटना कभी कहकर नहीं आती।
1: बिल्कुल,
0: कहीं
1: बिल्कुल
0: भी आप गिर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
1: बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम हमेशा हेलमेट पहनती हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दोस्त भी इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान
0: रखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी हेलमेट पहनोगी अब से।
1: बिल्कुल, मैं पहनती हूँ लेकिन कभी कभी मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज जो हमने इस बारे में इतनी बात की उसके बाद वाकई मुझे भी ऐसा लगता है कि हेलमेट पहनना हमारे लिए बहुत जरूरी है,
0: आपकी हेल्थ के लिए,
1: हमारी ही जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि ये आपके लिए ही एक अच्छा प्रण कह सकते हैं, हम प्रण ले लीजिए कि हेलमेट के बिना कहीं नहीं जाना।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये आपकी सेफ्टी का सबसे बड़ा एक स्रोत है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित सड़कें और जिम्मेदार नागरिक मिलकर ही दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं।
1: और दोस्तों सड़क सुरक्षा केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

0: जैसा कि अभी हम दोनों ने बात की।
1: बिल्कुल, इसलिए आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, चलते चलते इस खूबसूरत सफ़र में पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया, और अब ये समय जो हो चुका है आपसे विदा लेने का, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों श्रीका?
1: लेकिन
0: जाना तो पड़ेगा वापस आने के लिए।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा इस मुलाकात का वापस, कि कब मैं वापस आऊंगी और आपसे रूबरू होंगी। बिल्कुल इशिका को भी साथ लेकर आऊंगी नेक्स्ट टाइम। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, और जो भी आज सारी बातें हमने करी, आशा करते हैं उन पर आप अमल जरूर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए और
1: इजाजत दीजिए अपनी दोनों रेडियो दोस्त, मैं शिका
0: और मैं लक्षिता।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी

0: पार्टी तमिल का वितरित कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा ये गाना सुनिए। संगीत है हिमेश रेशमिया का। फिल्म का नाम है क्योंकि।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, धुन शांतनु मोइत्रा ने बनाई है।

0: बन छत पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की आवाजों में आइए अब सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत। शंकर एहसान लोय का संगीत है और फिल्म का नाम है कुछ ना कहो।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को

अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक की आवाजों में आइए अब सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का एक गाना। समीर की गीत रचना को संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

फिल्म दिल दे चुके सनम। इस फिल्म का गाना आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक की आवाज़ों में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 KHz पर। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी जयपुर केंद्र से होंगे।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब के सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। RPSC की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित

0: इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थियेटर में स्टरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृ शक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।

0: प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
1: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
2: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थप्पड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भांवरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अमित कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में

टीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी आईवीएफ सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे आईवीएफ सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि एआरटीवी नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉ. नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरूषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया।
राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा

0: उदयपुर पहुंची। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा दो दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसाना ने नुवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रा तुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी, दूजा हल्का में कछे कछे बरसात रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, किसाना ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला माए आज हैदराबाद माए राखी जिया निवेशक सम्मेलन माए आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारा रो मोटो केंद्र बताता थका कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता थका कहो के सरकार किसाना ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराउन तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशक और उद्यमियों ने 23-25 मई ताई जयपुर माए फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन माए शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इन पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ई बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माए संभावित ई परीक्षा माए पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवारा ने अर्जियां माए सुधार सारू 16-30 मई ताई रो टेम दियो चियो है। इन माए मोबाइल नंबर, ईमेल और चिट्ठी पत्री रो पतो अपडेट करियो जा सकेला। बदलाव हूं पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन रातेत केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी वेला। कोई बदलाव नहीं करण री सूरत माई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवणु और अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी वेला। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापावड़ी लुगाइयारी मोहतरा

0: मामला रिजांत सारू समिति बनाती रिची है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आ जानकारी दीनी। इन विजय अस्पताल प्रशासन जापा वाली चार महिलाओं रे किडनी फेल वे जावन री आज पुष्टि कर दीनी। आरो डायलिसिस करियो चाचियो है। राज्यरा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कैरर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर माई साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो। औषधि नियंत्रण विभाग री ओरू दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है। इन बीच जयपुर बुलाई चिया डॉक्टरों री टीम ही मरीजों रा इलाज रा काम माथा नजर रख रही है। एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य माए तुरंत रोक लगाती नी है। ध्यान जोग है कई घटना माए हाल ताई जापा वाली दो लुगाइया री मौत वे की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मनु काम कर रही है। वे आज जयपुर माए महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रही ही। दिया कुमारी पोषाहार वितरण माए साफ गोई और साफ सफाई तय करण माथे जोर देता थका कहो कि इनु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साचो भेला। देश माए घरेलू रसोई गैस री पूर्ति आसानियों करी जा रही है और कठे हुई पूर्ति माए कमीरा कोई समाचार नी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय री सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली माए कहो कि सरकार ग्राहकों ने गैस री कमियों बचावन और इनरा मूल माए थरता राखण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वे बतायो कि मार्च महीनाओं हाल ताई 6 लाख बत्ता PNG कनेक्शन चालू कर दिया चिया है।
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश में आए काल इन साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला। इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू सगली अदालतां उपभोक्ता मंचा और राजस्व अदालतां माए गाड़ियां रा चालान चेक बाउंस वेवन बैंकों लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करियो जावेला। सवाई माधोपुर जिला माए लोक अदालत सारू 10 बेंच बनाईची है। जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी माए 2 बेंच सुनवाई करेला। इनके अलावा बौनली खंडार बामनवास और चौथ का बरवाड़ा माए 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला। झुंझुनू जिला माए लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत माए मामला रो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो चावे है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारे और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला। आज कोलकाता माए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी माए भी भाजपा विधायक दल री मीटिंग माए वाने दल रा नेता चुनीचिया। श्री अधिकारी बंगाल माए भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला। पश्चिम बंगाल माए पहली दफा भाजपा रा राज माए मंत्रिमंडल माए शामिल करया जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड माए शपथ दिराई जावेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए राज्य माए जागरूकता कार्यक्रम रख्या जा रहा है। सवाई माधोपुर माए आयुर्वेद विभाग री ओरू 50 दिन रो काउंट डाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रहा है। वठे पहली वाला सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान माए लोगां सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटा और पाली जिलारा कोलीवाड़ा माई स्कूली विद्यार्थियां सारू योग शिविर लगाई चिया।

0: टीबी मुक्त भारत बनावण रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने बलवन खुर्द माए शिविर लगाई चिया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल बतायो कि शिविरा माए चलती फिरती मशीनाओं छाती रा एक्सरे खून माए शुगर और ब्लड प्रेशर री जांच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गांव माए 12 मई ताई चलेला। अरब मौसम प्रदेश में आज घनखर ठोणा मौसम सूखो रहो। राज्य रा आतुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू ऊं जिंदगी माथे असर पड़ियो है। माना बाड़मेर खबर नवीस बतायो कि जिला में पड़ रही जोरदार गर्मी रा कारण जिंदगी माथे असर पड़ियो है और अस्पताल में लू रा मरीजा रा इलाज सारू खास व्यवस्था करी ची है।
1: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बालोतरा जिला में जसोल री लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरियां जागरूकता रैली निकाली। रैली में नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारा माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओरू एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेज छठो युवा संगम राख्यो चाचियो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रा नौजवाना माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगां बीच संपर्क मजबूत बनावनु है। इन कार्यक्रम रा तेज देश भर चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआ री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रो दौरो कर रहा है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माई चुनी चिया है। आहोर श्रीलंका माई 25-28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माई राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रहा। आखिर माई खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तहकीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रात उनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी से प्रसारित कार्यक्रम FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर अब देश दुनिया में हर जगह है। सायंकाल के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान भाई बहन अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन भाड़ा सभी किसान भाई बनना के ताई आपका साथी जुगल भाई को गणो गणो और राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा।

0: बिहार के वीवाई कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।
1: चौपाल कार्यक्रम में करसान भाई बहनों आपको स्वागत छे। और आज जो आपने चौपाल का पावणा छे वो पधार चुक्या छे। पावणा छे आपना डॉक्टर MC जैन साहब और आप छे निदेशक अनुसंधान कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय कोटा। जैन साहब माँ की चौपाल में आपको गुणों गुणों स्वागत। राम राम साहब।
2: राम राम जी।
1: और करसान भाई बहनों आज का सजीव फोन इन को विषय बहुत बढ़िया छे। आज जो जलवायु परिवर्तन छे समय के पहली बरसात आ रही है समय के पहले सर्दी आ रही है समय के पहली गर्मी आ रही है और ये बदलता मौसम में अपनी खेती बाड़ी में नरी मुसीबत आ रही है। तो ये बदलता मौसम में भी अपना अपनी खेती बाड़ी में अशा काई काम करा अशा काई अनुसंधान करिया चाहे अपने जो वैज्ञानिक चवान तो यही सब बातें ले रहे। यदि आपका मन में भी प्रश्न छे आप भी उनको समाधान चाहो छो तो माँ का वही जाने पहचाने फोन नंबर छे 2944212 और कोटा से बाहर का जो करसान भाई चुवन छे वह 0744 कोड लगा सीधा डॉक्टर MC जैन साहब से बात कर सके छे और अपना प्रश्न को समाधान पा सके छे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यह बात बताओ कि जलवायु परिवर्तन यो छे काई।
2: किसान भाइयों राम राम। देखो जलवायु परिवर्तन काई छे जलवायु का कई सारा तत्व छे जान ठंड पड़ रही छे सर्दी तापमान बढ़ रहे छे बारिश हो रही छे हवा चाल रही छे ये सब जलवायु का तत्व छे
1: जी।
2: और यह तत्व के अंदर परिवर्तन आ रहे छे। सर्दी कई बार देखो नवंबर दिसंबर तक सर्दी न पड़े जनवरी मार अचानक ठंड बढ़ जाओ छे या मार्च में आप देखा कि मार्च में एकदम गर्मी बढ़ जाओ छे या बारिश देखा तो एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो जाओ छे या कहीं कहीं बहुत ज्यादा सूखो पड़ जाओ छे या अनियमित बारिश हो जाओ छे। अभी आपने देखा कि आपने अप्रैल महीना के अंदर यहाँ बारिश आई गड़ाया तो ये सब परिवर्तन हो रहा है जलवायु के कारण। जलवायु परिवर्तन इसको बोलते हैं कि इनके तत्वों में जो परिवर्तन आ रहा है चाहे सर्दी में गर्मी में बारिश में इनमें जो परिवर्तन आ रहा है उसको कहते हैं हम जलवायु परिवर्तन।
1: जी जी जी।
2: असामयिक वर्षा असामयिक तापक्रम में वृद्धि असामयिक तापमान में गिरावट ये सब जलवायु परिवर्तन के संदेश हैं।
1: तो यहाँ को आपने खेती बाड़ी पर भी आगे तो दुष्प्रभाव चे।
2: हाँ खेती बाड़ी पे देखो बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अपन जानते हैं कि खरीफ की जो फसल है वो खरीफ में होगी रबी की फसल होगी वो रबी में होगी।
1: जी जी।
2: अब रबी में अपन जानते हैं ठंड की फसल ठंड पड़ेगी तभी तो गेहूं में दाना बनेगा
1: जी जी।
2: तभी तो सरसों फलेगी फूलेगी तभी तो धनिया में फूल आएंगे। लेकिन अगर ठंड के टाइम में गर्मी बढ़ गई
1: तो
2: हमारा दाना नहीं बनेगा पोचा रह जाएगा खराब हो जाएगी या उसके अंदर धनिया के अंदर अपने पाला पड़ जाएगा या और कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ये समस्याएं जैसे अपन सोयाबीन की बात करें अभी आप देखेंगे सोयाबीन में ज्यादा बारिश हो गई तो फसल गड़ गई।
1: साल से काई पल्ले ही नहीं पड़ रहे फसल।
2: तो ये जो समस्या आ रही है इसकी वजह से हमारी फसलों के अंदर बहुत नुकसान हो रहा है किसान भाइयों की लागत भी नहीं निकल पा रही
1: जी जी जी।
2: तो इससे बचने के लिए अपन को कई सारे उपाय करने पड़ेंगे।
1: खरीफ में तो लागत भी नहीं कट रही दो
2: खरीफ में लागत भी नहीं निकल रही क्योंकि जैसे सोयाबीन में पिछले बार भी अपन ने देखा 1400-1500 mm तक बारिश हो गई तो खेत भर गए पूरे तो फसल गड़ के खराब हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने जो कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक साथी हैं हमारे यहाँ अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना चल रही है उस परियोजना के माध्यम से हमने किस्मों का विकास भी किया है हमने तकनीकों का विकास भी किया है। जैसे तकनीक की बात करूं मैं तो अपन क्या करते हैं जमीन पे अगर बुआई करते हैं सिंपल सीधी जमीन पे तो खेतों में पानी भर जाता है फसल गड़ जाती है। हमारी एक तकनीक है ब्रॉडबैंड फरो सिस्टम जिसको

0: कहते हैं कूड और क्यारी विधि। पहले 3 फीट की एक क्यारी बनाए, हाँ, फिर उसके बीच में कूड होगी, हाँ, दोहरा टाइप छोटा सा, हाँ, फिर हाँ, वापस 3 फीट की एक क्यारी बनेगी, हाँ, इस प्रकार से ऐसी तकनीक है हमारे पास, ऐसे यंत्र भी हमारे पास है, हाँ, किसानों को भी हम दिखाते हैं, बताते भी हैं। तो अगर वो जो बेड बनाएंगे वो जमीन से 6 इंच उठी हुई होगी।
1: अच्छा, मिट्टी उठी हुई,
0: मिट्टी उठी होगी
1: और नीचे आगे बाएं दाएं मतलब दोरा बन गया,
0: दोरा बन गया छोटा छोटा, तो वो जो पानी है वो दोरा में निकल जा और खेत के बाहर निकल जाएगा।
1: और वह मैदान तो कम से वो कम पानी में मल्लियो,
0: कम पानी में, जो अपन वो जो उसपे 3 लाइन हम सोयाबीन की बो देते हैं 1-1 फीट की दूरी पे, क्योंकि 1 मीटर की दूरी होती है टोटल उसकी, 1 मीटर की क्यारी की चौड़ाई होती है, तो उसमें हम 3 लाइन बो देते हैं सोयाबीन की, तो उससे हमारी जो फसल है वो खराब नहीं होती है, गलती नहीं है और अच्छा उत्पादन देती है और जल निकास भी उससे प्रॉपर हमारा सही हो जाता है, तो हमारी फसल उससे बची रहती है। आजकल नई किस्में आ रही है, जैसे NRC 150 है या NRC 138 है। हाड़ौती के किसान क्या है, JS 95-60 के पीछे पड़े हुए हैं, जो थोड़ी सी समय ज्यादा लेती है। अगर हम छोटी किस्म मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की तरफ जाएंगे, कम समय की फसल लेंगे, तो हमको उसमें ज्यादा फायदा होगा और हमारी फसल जब बारिश होगी तब तक वो फलाव की स्थिति में चली जाएगी, तो फसल खराब होने से बच जाएगी। तो हम 100 से 102 या 105 दिन की फसल लेंगे सोयाबीन की, तो फायदा ज्यादा होगा।
1: अब मान लो जैसे आपने की गई जो दोहरा दिया जो ये वर्षा बना रहा अपन, तो फिर उम्र तो मतलब सोयाबीन कम खड़ेगी ना जगह तो
0: नहीं, सोयाबीन ज्यादा निकलती है उसमें। अच्छा। हमने देखे, हमने प्रयोग करके, हाँ, कि हमारी जो 3 लाइन है या 1 लाइन या दूसरी लाइन की दूरी है उसमें 1 फुट की दूरी होगी, क्योंकि दूसरा जो धोरा बनेगा वो धोरा ज्यादा चौड़ा नहीं होता, वो 6 इंच ही चौड़ा होता है, हाँ, और उसके बाद फिर लाइन आ जाती है, तो जो 2 लाइनों के बीच की दूरी है सोयाबीन की वो 1 फीट ही रहेगी, चाहे धोरे में बोते हैं अपन चाहे प्लेन जमीन पे बोते हैं, हाँ, तब भी जो दूरी है 1 ही फीट रहेगी। और दूसरा फायदा ये होता है इसमें कि खरपतवार नहीं पनपते जी। अच्छा। बिल्कुल भी। और तीसरा फायदा यह है कि वायु का संचार जमीन में बढ़िया रहता है।
1: जी जी जी।
0: तो सोयाबीन की जड़ों में जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, वो जीवाणु हवा की जो नाइट्रोजन होती है उसको पकड़कर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए तो अपन सोयाबीन में ज्यादा यूरिया का उपयोग नहीं करते। तो इसलिए अगर वायु संचार प्रॉपर रहेगा उसमें, सही रहेगा वायु का बहाव, सही रहेगा जमीन में, तो वो जो जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता अच्छी रहेगी, और वो क्रियाशीलता अच्छी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और वो पौधे को ज्यादा मिलेगी, तो हमारा पौधा हष्ट पुष्ट होगा, फलियों की संख्या ज्यादा बनेगी, फूल ज्यादा आएंगे, कीड़े मकोड़े कम आएंगे और दाने बढ़िया बनेंगे, भरे हुए बनेंगे, तो इससे हमारे उपज बढ़िया होती है और गुणवत्ता पूर्ण होती है।
1: तो ये आपका अनुसंधान पर ये तरह से बाहर देखिए,
0: हाँ, ये हमने बाके देखी है, हमने लगा के देखी है, उनके परिणामों के बाद ही हम किसानों को ये राय दे रहे हैं कि किसान खुद भी इसका अनुसरण करें। किसान देखें अपने पास जो जमीन है 2-2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, उसमें से किसान देखें कि आधी जमीन में तो वो अपने तरीके से लगाएं, आधी जमीन में हम जैसे कह रहे हैं वैसे लगाएं, तो उनको इसका फर्क पता चल जाएगा कि कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया है जो ज्यादा बारिश में भी हमारे लिए कारगर है।
1: जी जी जी जी।
0: एक तो ये है, दूसरा ये हो सकता है कि हम लगातार सोयाबीन बोए जा रहे हैं, लगातार सोयाबीन फेल होती जा रही है, तो हम सोयाबीन का विकल्प ढूंढें। सोयाबीन की
1: एक करसान साथी वहाँ से राम राम करा। हेलो,
0: राम राम।
1: राम राम साहब, शुभ नाम बताओ आपको।
2: जी, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: बोलिए नीतीश जी।
2: जी, मेरा प्रश्न एक्सपर्ट से ये है कि अल्लीनो और लालीना का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जिस पर अल्लीनो बर्थ रहता है तो भारतीय कृषि पर इसका किस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ता है, वो अल्लीनो और लालीना कितना प्रभावित करता है भारतीय कृषि को?
0: देखो, बहुत बहुत सही सवाल है। भारतीय कृषि में अल्लीनो लालीनो का बहुत बड़ा बहुत बहुत दुष्प्रभाव रहा है। आपने देखा कि इवन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। हमारे कई सारे ऑर्चार्ड उखड़ जाते हैं, हमारे कई सारी वेजिटेबल्स खराब हो जाती है, हमारी जो क्रॉप है वो खत्म हो जाती है। तो अनटाइमली जो रेन आ रही है, असामयिक जो बारिश आती है इसकी वजह से, या हवा का वेग भी उस बारिश के साथ होता है, तो हमारी इवन सोइल इरोजन भी होता है, हमारे मिट्टी का क्षरण भी होता है, मिट्टी भी उड़ के चली जाती है, पूरे के पूरे खेत की जो ऊपरी परत है मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है वो बह के नदियों में चली जाती है। इसकी वजह से हमारे भारतीय कृषि में इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
1: जी जी।
2: दूसरा प्रश्न और, IMD या स्काईमेट के जो अनुमान होते हैं, तो IMD या स्काईमेट के अनुसार जो मौसम के पूर्व अनुमान होते हैं वो क्या सही साबित होते हैं, उसके हिसाब से भी क्या तैयारी करना तैयारी कर सकते हैं खेतों की अपन?

0: बिल्कुल बहुत। देखो आप देखो लास्ट ईयर आईएमडी की जो थी अपनी जो भविष्यवाणी थी उसमें देखिए, लास्ट टाइम हमारे अगर हाड़ौती की मैं बात करूं तो आईएमडी ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जो बारिश होगी, राजस्थान की मैं बात करूं तो कि जो जितनी होती है औसत वर्षा उससे अधिक होगी, और हुआ ऐसा ही। हमारे यहाँ कोटा की अगर मैं बात करूं संभाग में लगभग 800-900 1000 mm तक बारिश होती है, लेकिन लास्ट ईयर 1400 mm हुई। इस बार उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि 92% हमारा रेनफॉल होगा। इट मीन्स सर्टेनली वो जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा कम रहने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली हमको जो किस्में हैं, हमको जो क्रॉप है या जो फसल है वो उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए कि इस बार थोड़ी सी बारिश कम रहने की संभावना है तो कम बारिश में हम कौन सी फसल और उस फसल की कौन सी किस्म की हम बुआई कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है।
1: तो एक अंतिम प्रश्न और आपसे था सर, इनके दुष्प्रभावों को अलिनो लालिना के जो प्रभाव को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, क्या भारत सरकार या राज्य सरकार कोई मिलकर इसके लिए कोई बड़े या कठोर कदम उठा रही है अभी?
0: देखो ये बहुत ऐसा नीतिगत फैसला है। नीतिगत फैसला एक जनरल किसान या एक बहुत छोटे लेवल पे नहीं लिया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन चूंकि ये जलवायु से संबंधित है और कई बार नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो देश के वैज्ञानिक मिलके भी, देश के नीति निर्धारित जो करते हैं वो मिलके भी इसका एक बहुत अच्छा बहुत सही उपाय या समाधान अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हम इसके प्रभाव से हमारी कृषि को बचा पाएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अब डॉक्टर साहब आप करें चक्र जैसे सोयाबीन, अब सोयाबीन के साथ ही और अन्य फसला को भी दुष्प्रभाव पड़े जे।
0: हाँ बिल्कुल पड़ता है। आज सोयाबीन जैसे सोयाबीन की बात करें, उड़द भी ऐसी कैसी फसल है, अगर खरीफ की मैं बात हाँ। करता हूँ उड़द भी वैसी है। इसके स्थान पे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पेडी लगाएं, चावल लगाएं। अच्छा। तो चावल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है हाँ। या थोड़ा सा हम रिप्लेस करें मक्का लगाएं या ज्वार लगाएं, ऐसी फसलें हम इनके स्थान पे ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं रबी की बात करता हूँ तो रबी के अंदर हमारे जो गेहूं की फसल है वो कई कई बार आप देखते हैं कि जैसे ही कई आजकल हाड़ौती की मैं बात करूं तो हाड़ौती में जैसे कोटा की बात करूं या बारां की करूं या बूंदी की करूं तो यहाँ पे चावल बहुत होता है। और किसान क्या करते हैं, चावल को काटने के बाद ही गेहूं बोता है
2: जी।
0: तो चावल कई बार कटते कटते हमारा दिसंबर आ जाता है, खेत तैयार होते होते तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो लेट हो जाती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक हम गेहूं की बुआई करते हैं। अब जब गेहूं की फसल को हमारा जनवरी का महीना मिल रहा है, फरवरी का महीना मिल रहा है, दो महीने में गेहूं की फसल पकती नहीं है
2: जी, जी, जी,
0: जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है तापक्रम बढ़ जाता है। तापक्रम बढ़ने से बालियों के अंदर जो दाने होते हैं
2: जल्दी
0: दूधी अवस्था में होते हैं, वो छोटे होते हैं। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो दाने पिचक जाते हैं, छोटे रह जाते हैं और वो फूलते नहीं है, इसलिए उपज गिर जाती है या दाना भी बीज के लायक नहीं बनता, तो उससे हमारे गेहूं की फसल में बहुत गिरावट हो रही है
2: जी। जी नहीं तो आप जैसे मान लो कि ये तो परिवर्तन जे, अब जो अबारी टाइम की आपने जो धान की फसल छे तो सही समय से बुआई करा बार अपन तो ऊंटी सही समय पर आवा।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा था कि हम जो गेहूं की लेट फसल कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको नुकसान हो रहा है। तो हम कोशिश ये करें कि धान की फसल को भी हम टाइमली रोपाई कर दें
2: जी, जी।
0: समय पे रोपाई करेंगे तो अक्टूबर के लास्ट में हमारी फसल कट जाएगी या नवंबर के प्रथम सप्ताह में कट जाएगी। गेहूं की बुआई का समय जो होता है वो नवंबर और इवन 10 दिसंबर तक भी हम गेहूं की टाइमली बुआई कर सकते हैं।
2: पिछली बार तो आपने देखी होगी कि लोग बीज ही न मिलो
0: हाँ
2: धान को,
0: धान का बीज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता लग गया था कि जो विभाग है उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस बार बारिश की संभावना अधिक है, तो बारिश की अधिक संभावना के कारण धान का बीज लोगों ने ज्यादा लगाया
2: हाँ।
0: सोयाबीन को थोड़ा सा कम महत्व दिया और हुआ भी वही, क्योंकि बारिश ज्यादा हुई तो जो सोयाबीन की फसल थी वो पिट गई और जो धान की फसल जिन लोगों ने बोई थी उनके वारे नारे हो गए
2: हाँ,
0: उनका उत्पादन अच्छा हुआ,
2: बीज बेच बाड़ आ गई, मजो आ गया
0: हाँ, उनको भी फायदा हुआ
2: जी जी। अच्छा तो यह तो वही का आपने धान की बात, तो ये धान अबारी टाइम की जो आपने किसान साथी जो कब तक तैयारी शुरू कर दे ताकि ऊंटी फसल सही समय पे।
0: देखो धान की अपन को पोत तैयार करनी पड़ती है
2: हाँ।
0: पहले बिजार तैयार करते हैं
2: हाँ।
0: नर्सरी में हम तैयार करते हैं
2: जी जी।
0: तो अभी मतलब मई का अभी जो समय चल रहा है लोगों ने या तो तैयारी शुरू कर दी होगी
2: अच्छा।
0: या 2-5 दिन में वो तैयारी मई के 15 मई के आसपास वो तैयारी शुरू कर देते हैं धान लगाने के लिए, जिनकी पानी की व्यवस्था जिन लोगों के पास है
2: जी जी,
0: तो वो गर्मियों में ही बिजार तैयार कर लेते हैं और 15-20 जून के बाद जैसे ही पहली बारिश आती है खेत को तैयार करके उसकी गरड़ वरड़ जो भी करनी होती है उनको हाँ। करके वो पौधे की रोपाई कर देते हैं। तो अगर 20 जून या 25 जून के आसपास धान की रोपाई हो जाती है तो वो सबसे बढ़िया होती है। अब जैसे जैसे धान की फसल लेट होती जाएगी वैसे वैसे अपनी लास्ट में जो कटाई होगी धान की
2: हाँ।
0: वो भी लेट होती जाएगी
2: हाँ।
0: उसकी वजह से हमारा गेहूं भी लेट आता जाएगा और सब चीजें लेट होती जाएगी, फिर

0: बाद में वही तापक्रम बढ़ने की समस्या आएगी तो हमारा गेहूं का उत्पादन पूरा नहीं होगा।
1: पर आप लोग कह चुन के जैसे गरड़ करवा और एक अब सीधी बुआई करना चाह तो अब तो सीधी बुआई को भी तो तरीका
0: हाँ,
1: आ गया ना
0: हाँ,
1: तो
0: डायरेक्ट सोइंग भी हो रही है हाँ, आजकल धान की सीधी बुआई भी
1: करते कोई प्रभाव
0: कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। उपज उसकी बराबर मिलती है क्योंकि अब आप देखो पहले हम कद्दू वर्गीय सब्जियों को सीधा बोते थे अब आजकल कह रहे हैं कि उसका बीज तैयार करके पौधा बना के फिर बोओ। इसी प्रकार धान में हम कहते थे कि पहले क्यारी बना के पौध तैयार करके फिर रोपाई करो। आजकल डायरेक्ट सीडिंग सीधा ही हम
1: पौधा
0: पौधे की जगह बीज सीधा हम बीज की बुआई भी खेत के अंदर कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो उम्र भी अब तो संभावना पूरी है ना, मतलब लागत भी कम आ रही है
0: और उत्पादन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा
1: हाँ।
0: थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क उसके अंदर नहीं पड़ता
1: हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। अब बात आ चुके जैसे आपने की कही हो जलवायु परिवर्तन की वजह से अब जैसे अतीत खरीफ में तो यहाँ फसला पर दुष्प्रभाव तो इको अगर रवि फसला में भी तो यहाँ के कोई और तकनीकी अभी चेके जिसो आपड़ बचा रहा आपड़ और कोई नई नई तकनीकी फसला ईजाद करा या कोई टेक्निक।
0: देखो नई नई तकनीक तो यही है कि हम पहली बात तो ये कि जब हमारा जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है हमको लगभग आइडिया लग गया है अब कि हमारी पूरे नवंबर में सर्दी नहीं पड़ती है, आधा दिसंबर निकल जाता है सर्दी नहीं पड़ती है, 15-20 दिसंबर के बाद सर्दी आती है और जनवरी का पूरा महीना सर्दी में रहता है। तो हमको जो भी हम रबी के अंदर बो रहे हैं चाहे हम गेहूं बो रहे हैं चाहे हम सरसों बो रहे हैं चाहे हम चना बो रहे हैं।
1: एक किसान साथी हाँ। से राम राम हेलो लागे चौहान से संपर्क न हो पाए हाँ।
0: तो इन ये जो अपन रबी की फसलें बो रहे हैं इन रबी की फसलों के लिए हमको किस्मों का चयन करना पड़ेगा कि कौन सी किस्म ऐसी है जो तापक्रम में परिवर्तन होने के बाद भी या पानी की कमी के बाद भी या इस तरह की परिस्थितियां बनती है जो विपरीत हो खेती के लिए उसके बावजूद भी हमको अच्छा उत्पादन दे
1: हाँ।
0: तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हमको किस्मों का चयन करना पड़ेगा।
1: तो ऐसी किस्मों को अनुसंधान हो चुके बीज आ चुके हैं बाजार में
0: बहुत आगे आज अच्छा। मैं अगर कृषि विश्वविद्यालय कोटा की बात करूं
1: हाँ।
0: तो चने की किस्में हमने या मसूर की किस्में
1: हाँ।
0: आज चना और मसूर आप
1: देखिए मसूर तो खत्म हो गया
0: खत्म हो गई लेकिन अब क्योंकि जो भारत सरकार का पोषण मिशन चल रहा है जो दलहनी उत्पादन का जो चल रहा है
1: हाँ।
0: उसके अंदर मसूर बहुत महत्वपूर्ण फसल है। मसूर है अरहर है और उड़द है
1: हाँ।
0: ये तीन दालों पे विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो ये हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे बारानी क्षेत्र है जहाँ पे पानी नहीं है पीने को भी पानी नसीब नहीं होता है वहां पे हम मसूर का उत्पादन बढ़ाएं। अगर हाड़ौती में मैं बात करूं तो बूंदी का आधा सेक्टर ऐसा है नैनवा तरफ का सेक्टर ऐसा है जहाँ पे पानी नहीं है
1: जी, जी,
0: वो
1: जी।
0: लोग पहले चना करते थे लेकिन चना भी आजकल विल्ट उखटा और कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया उत्पादन उतना नहीं मिल रहा है। तो उसकी जगह अगर वो मसूर के ऊपर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा उत्पादकता भी बढ़ेगी।
1: तो यही तरह से भी अपनी जलवायु परिवर्तन में फसल अलग से बार भी
0: हाँ।
1: और काई तकनीकी अपना
0: से मैं किस्मों की बात कर रहा था। हमारी मसूर की जो किस्में हैं कोटा मसूर 2-3 कोटा मसूर 3 कोटा मसूर 4 कोटा मसूर 5 इसी प्रकार अलसी की भी हमारी किस्में हैं कोटा
1: हाँ, अलसी भी खत्म होगी
0: हाँ, कोटा बारानी अलसी 3 है कोटा बारानी अलसी 4 है 5 है 6 है 7 है ये किस्में हमारी है। इसी प्रकार चने की है कोटा देसी चना है 2 है कोटा देसी चना 4 है कोटा देसी चना 5 है कोटा देसी चना 6 है। तो ये किस्में हमने इस जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों को देखते हुए ही ईजाद की है कि इस समय में भी किसान को ये अच्छा उत्पादन दे सके
1: हाँ। तो यहाँ को बीज उपलब्ध आपके यहाँ
0: इनका बीज उपलब्ध
1: किसान भाई बन ला सके
0: किसान भाई बहन हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया। अब जैसे आप आज की तारीख में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही है और जो बड़ा बड़ा किसान छे वो नई तकनीक जैसे आप सेट नेट से या दूसरी तकनीकी से या वो बड़ा बड़ा वो बड़ा चौका नाम चौको ये बड़ा बड़ा तो इसो भी परिवर्तन से बचे जा सके।
0: हाँ देखो बहुत अच्छी बात है भारत सरकार भी इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती मतलब खेती को संरक्षित कैसे करें हम जलवायु के जो पैरामीटर्स हैं जलवायु की जो चीजें हैं तापक्रम की हो या लाइट की रोशनी की हो या बारिश की हो इनकी विपरीत दशाओं से इनकी संकट से हम फसल को बचाने के लिए संरक्षित खेती कर रहे हैं ताकि हमारे अगर चारों तरफ हम ये शेड नेट हाउस लगा के या पॉली हाउस बना के उसमें खेती करते हैं तो अंदर हम हमारा जो भी तापक्रम है उसको मेंटेन कर सकते हैं उसकी गैस को हम मेंटेन कर सकते हैं।

0: उसकी लाइट को मेंटेन कर
1: अरे
0: सकते हैं,
1: वाह,
0: उसमें पानी को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो पौधे की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उसमें सारे जो जलवायु के तत्व होते हैं वो हम संरक्षित करके या उसको मेंटेन करके हम पौधे की वृद्धि पर्याप्त कर सकते हैं
1: हाँ।
0: और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
1: और सरकार भी सहयोग करी जब तो यहाँ तकनीक यहाँ पर
0: बिल्कुल सरकार
1: ये तरह का
0: संरक्षित खेती पे सरकार अनुदान दे रही है
1: हाँ।
0: जो भी पोली हाउस लगाते हैं ये उद्यान विभाग वालों के मार्फत आप अपना पोली हाउस का प्रपोजल बना के दो, बैंक भी आपको लोन भी देगी
1: हाँ।
0: और आपको सरकार सब्सिडी भी देगी
1: जी जी
0: ताकि
1: जी।
0: आप हाई वैल्यू क्रॉप जो उच्च क्षमता वाली जो उच्च उत्पादन देने वाली फसलें हैं जिनकी मार्केट में रेट भी ज्यादा रहती
1: हाँ।
0: है, तो अगर किसान वो खेती करता है तो जलवायु परिवर्तन से भी बचा रहेगा और उसको इकाई क्षेत्र में आमदनी भी ज्यादा होगी
1: हाँ।
0: और सरकार की योजनाओं का लाभ भी उसको प्राप्त होगा
1: जी
0: तो
1: जी।
0: इस तरह से वो किसान वो भी कर सकता है।
1: पर अब जैसे आम किसान तो यही लागत कहता है या यही कहता है न कर सके, और अब बड़ा किसान भी न रहे, आप तो जो खेत है वो भी छोटा होता जा रहा है, तो छोटा खेत तो यहाँ को तो परिवर्तन मतलब जलवायु को वहां पर तो और ज्यादा मार पड़े चाहिए एक साथ
0: हाँ, जब जो छोटे किसान होते हैं
1: हाँ।
0: तो छोटे किसानों को हम यही सलाह देते हैं कि भाई आप उसको एक समन्वित खेती के रूप में करो
1: हाँ।
0: जब आपके 4 बीघा जमीन है या 3 बीघा जमीन है तो आप कोशिश ये करो कि वो 4 बीघा 5 बीघा जो भी आपके पास है उसमें समन्वित खेती करो कि कुछ दाल वाली फसल भी लगाओ, कुछ धान वाली फसल भी लगाओ
1: हाँ।
0: कुछ सब्जी वाली फसल भी लगाओ, 2-4-5 फलदार पौधे भी लगाओ, गाय भैंस भी रखो आप, मुर्गी पालन भी करो आप, वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी आप डालो, तो इससे किसान को कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी आमदनी उसको प्राप्त
1: मरेगा ना एक साथ
0: हाँ। एक फसल खराब होती है तो पूरा मर गया
1: हाँ।
0: आज सोयाबीन बो दिया आपने सारे में, फेल हो गई तो किसान को दाना नहीं मिला
1: जी, जी।
0: अगर सोयाबीन के साथ साथ वो कोई दूसरी चावल की फसल भी ले रहा होता
1: हाँ।
0: तो एक जगह
1: 2-3 बीघा चावल
0: तो
1: भी आता।
0: उसको वो फायदा हो सकता था। वो अगर जानवर पाल रहा है तो दूध से उसकी इनकम हो सकती थी, मुर्गी पालन कर रहा है तो अंडे बेचकर वो आमदनी मिल सकती है, या उसके पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट रख रखी है तो गाय भैंस का गोबर वर्मी कंपोस्ट बनाने में और वहां से जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है वो खेत में डालने में एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: आपस में उनको फायदा होता है, तो ये भी किसान कर सकता है।
1: पशुपालन जी के साथ साथ वो भी कदी न मर
0: हाँ,
1: है ना
0: हाँ,
1: वो भी साथ साथ करा तो खेत
0: दोनों पशुओं को चारा मिलता रहेगा खेत से
1: हाँ,
0: पशुओं का जो गोबर होगा वो खेत में डलता रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे का फायदा लेते हैं, तो किसान की आमदनी भी दोनों से मिलेगी, फसल से भी मिलेगी, पशुओं के दूध से भी मिलेगी, गाय गोबर जो होगा आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट बेचकर भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने खेत में भी डाल सकते हैं।
1: सही। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये ना डॉक्टर साहब का, जैसे खेती में अब वहाँ तो लागत एक साथ एक में ही लगा दी और यहाँ लागत अलग अलग लागी तो वहाँ से आय भी तो
0: आय आय लगातार मिलेगी
1: हाँ।
0: आपको एक फसल बोओगे तो आप जब वो फसल हार्वेस्ट हो जाएगी, जब उसको काट लोगे, आप जब आपका दाना घर में आ जाएगा, जब मंडी में बेचने जाओगे तभी आपको आमद होगी
1: हाँ।
0: अन्यथा अगर आपके पास 5 तरह के आइटम है तो कभी आपने दूध बेचा उससे
1: हाँ।
0: आपको पैसा मिल गया, कभी आपने अंडे बेचे आपको उससे फायदा मिल गया, कभी आपने वर्मी कंपोस्ट बेचा उससे फायदे मिल गए, कभी आपने सब्जी तोड़ के बाजार में पहुंचाई
1: हाँ।
0: उससे फायदा मिल गया, तो इस तरह से आपको आमद लगातार दिनों दिन होती रहेगी, रोज होती
1: मतलब जलवायु यदि परिवर्तन कर रही है तो परिवर्तन आपने
0: भी करना पड़ेगा, खेती में भी परिवर्तन करना पड़ेगा,
1: मतलब उनके हिसाब से आपने डरनी पड़ेगा आगे
0: हाँ। जलवायु पे तो देखो मनुष्य का नियंत्रण है नहीं,
1: पर यहाँ तो
0: यहाँ अपन खेती के अंदर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, अपन चाहे जो खेती के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं तो जलवायु परिवर्तन से हम बच सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात की चाह तो। और अब जैसे आप पहले आपने जो किसान साथी चाह के लागत बढ़गी, अब आपने की के पहले तो वो सारी चीजों का घर में हो जाओ ची, दूध घर को हो जाओ चो, सब्जी घर की हो जाओ ची, फल घर का हो जाओ चा, यानी कि जो रसोई में सामान रह चा ना उमा भी थोड़ा घना ही काय काय जीरो वीरो रसाई लाड़ी पड़ो जो बाकी सारा सब घर न हो जाओ चा, तो वो खुश रह चो एक तरह
0: था, और
1: अब घर में का ही न हो सारा ही
0: सब बाजार से,
1: अब पेड़ का अपने जलवायु परिवर्तन तो होगा तो आप भी तो
0: परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब अपने सारी चीजें अपने यहाँ पैदा होती थी, अब कुछ चीजें हमारे पड़ोसी की पैदा होती थी
1: हाँ।
0: कुछ हमारे गांव में किसी दूसरे की पैदा होती थी
1: जी, जी।
0: कुछ हमारे सगे संबंधियों में होता था खेत से, तो हम कई बार उनको एक्सचेंज भी कर लेते थे कि हमारे ये पैदा हुआ प्याज हुए तो तू प्याज ले जा, तुम्हारे यहाँ अगर अनाज पैदा हुआ तो अनाज वहां से ले लेते थे, तो ये सिस्टम भी था, तो बाजार में जो हमारी आमदनी जो भी हमारा पैसा था वो कम जाता था, लागत जो है वो हमारी मतलब पैसा जो हमारा है वो बचा रहता था
1: बचा रहे। अब जो ये किसान भाई बन चे जो आपकी बातचीत सुन रहे जलवायु परिवर्तन देखता हुआ खेती बाड़ी में अनुसंधान का क्षेत्र सोचो आप,

0: काय परिवर्तन लाओ या कहता है और काय काम कर बाकी आओ।
1: देखो किसान भाइयों, इंसान भी स्मार्ट बनता जा रहा है।
0: हाँ।
1: फोन भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं, हम जो घड़ी पहनते हैं वो भी स्मार्ट बनती जा रही है।
0: तो एक खेती कर साढ़ साथी। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ राम राम साहब।
2: राम राम साहब,
0: शुभ नाम बताओ आपको।
2: जितेंद्र बात कर रहे हो साहब।
0: कहाँ सु?
2: ग्राम बाजार से।
0: हाँ पूछो, प्रश्न पूछो आप डॉक्टर साहब से।
2: सर से यह पूछना साहब।
0: आप पूछो। हेलो।
2: साल मौसम मतलब बारिश की कहीं संभावना है? बारिश
1: देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपने सुना नहीं शायद। इस बार मौसम विभाग ने अपने को भविष्यवाणी की है कि हमारी 92% ही बारिश होगी, मतलब जो जनरल बारिश होती है उससे थोड़ी सी कम होगी। तो हमको उसी प्रकार से इस बार खेती की प्लानिंग करनी है कि हमको क्या बोना है क्या नहीं बोना है। अगर आपके 1000 mm बारिश होती है तो ये मान के चलो कि इस बार 920

0: 92 परसेंट ही बारिश होगी, मतलब जो जनरल बारिश होती है उससे थोड़ी सी कम होगी। तो हमको उसी प्रकार से इस बार खेती की प्लानिंग करनी है कि हमको क्या बोना है क्या नहीं बोना है। अगर आपके 1000 mm बारिश होती है तो ये मान के चलो कि इस बार 920 920 mm ही बारिश होगी।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ डॉक्टर साहब, आप करिया चेक।
0: मैं कह रहा था कि खेती को स्मार्ट बनाना पड़ेगा।
1: हाँ
0: स्मार्ट किसान, अब क्योंकि किसान दिमाग से काम करना चाहिए कि हम वो सारी तकनीकियां जो जलवायु परिवर्तन के से हमको बचा सकती है
1: हाँ
0: उनकी तरफ जाना पड़ेगा। हमको कम समय की किस्में लेनी पड़ेगी, हमारी जो नई उन्नत तकनीकियां हैं खेतों में उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: हाँ
0: जमीन के अंदर हमको गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका उपयोग करना पड़ेगा। सिंचाई के लिए हमको माइक्रो इरिगेशन पे जाना पड़ेगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रोट हमारे सूखा पड़ जाता है,
1: हाँ
0: तो सूखा पड़ने के बाद हम पानी की भी बचत करें,
1: जी
0: या हमारी मिट्टी जो बहके चली जाती है अधिक पानी की वजह से उसको भी हम संरक्षित करें कि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहके नहीं जाए।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये सारी चीजें एक साथ हमको स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी जब हम स्मार्ट
1: बहुत
0: खेती कर पाएंगे।
1: डॉक्टर MC जैन, निदेशक अनुसंधान, बहुत ही बढ़िया बात आपने खींचे ई कल्ले का, आपका ताई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम जी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। RKVY कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।
1: चौपाल कार्यक्रम को टर्म पूरा हो गयो। आपका साथी जुगल भाई कहते हैं आगे दियो पर राम राम।

अभी आप चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद

ओम भारती के गाए इस लोकगीत के साथ ही अब लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत सुनिए, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में ईमानदार फिल्म का एक गाना। प्रकाश मेहरा गीतकार हैं और कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत दिया।

0: सनम।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। लता मंगेशकर को सुनिए फिल्म करण अर्जुन में। हिंदी वर्ग की गीत रचना है और संगीत संयोजन राजेश रोशन का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, प्रोग्राम के अगले गीत सुनेंगे इन सूचनाओं के बाद। आपकी सेहत कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल 9 मई को प्रातः 8:15 पर। इसमें विषय है गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार हो हमारी जीवन शैली। जो भी श्रोता इस विषय में जानकारी चाहते हैं वे डॉक्टर ज्योति शर्मा से बात कर सकते हैं। नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में 12 मई को सवेरे 7 से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारे आज के अतिथि श्रीमती अभिलाषा जैन बियर से बातचीत। विषय रहेगा नर्सिंग एक सेवा का कार्य। इनसे बातचीत करेंगे राजेश महावर। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गाना। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की। समीर की गीत रचना है और अनु मलिक ने इसे संगीत से संवारा। फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं।

0: प्रीतम के संगीत निर्देशन में समीर का गीत आपने सुना अदनान सामी और तुलसी कुमार की आवाजों में। फिल्म थी डार्लिंग।
1: चंबल चैनल पर आप सुनते हैं अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए वक्त वही मगर दिन बदल गया। अब शुक्रवार की जगह एक दिन पहले गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक आप करवा सकेंगे इस प्रोग्राम के लिए अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग और सुन सकेंगे अपने पसंद के गीत उसी समय यानी शनिवार रात 9 बजे से 10 बजे तक। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के लिए फोन नंबर भी वही है 29411142 STD कोड 0744। याद रखिएगा टेलीफोन नंबर 2941142 STD कोड 0744। और दिन जरूर याद रखिएगा गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक हमें रहेगा आपका इंतजार।
0: आकाशवाणी कोटा बूंदी के प्रिय श्रोताओं, आपके दिल की धड़कनों को छूने के लिए एक बार फिर से आ रहा है वही प्रोग्राम जिसका नाम तो याद ही होगा आपको। रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल। अब ये कार्यक्रम सुनिए अपने बदले हुए दिन यानी रविवार को रात 9 बजे। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक तथा साथियों की आवाजों में लावारिस फिल्म का गाना। जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई राजेश रोशन ने।

फिल्म लावारिस के इस गीत के साथ ही अब चित्रपट संगीत का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आपकी सेहत कार्यक्रम में कल शनिवार 9 मई को सवेरे 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम होगा और इसका विषय है गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार हो हमारी जीवन शैली। आप में से जो भी श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे लाइव कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर ज्योति शर्मा से बात कर सकते हैं। समय और दिन एक बार फिर सुन लीजिए। शनिवार यानी कल 9 मई को सवेरे 8:15 से 9 बजे तक इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है एसटीडी कोड 07442941142। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 में 1413 kHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से होगी।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण

0: भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली

0: तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से

0: देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन उस देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1%

0: से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VC के IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। मोबाइल ऐप पर हमारे कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रामनारायण मीणा का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपनी फरमाइश हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9530120202 9530120120। इस नंबर पर आप हमें अपनी पसंद लिख सकते हैं और अपनी जगह का नाम और फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम देवनागरी लिपि में लिखें।

आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। राजे जाधव देशमुख वायाल और इनके घर वाले आप सब हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। यहीं से जुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। इसी गीत को सुनने की फरमाइश आप सबने हमें भेजी, राजेंद्र कुमार आर्य, अंजलि विहार, 12 रोड, कोटा से। फरमाइश करने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम हैं, जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, हिना, सकीना, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज और इनके साथी। इसी गीत को सुनने के लिए आप सब ने हमें फरमाइश भेजी। लीजिए आप सब अपनी पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चांद का ये गीत।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ और कविता फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके घर वाले, कृष्णा पार्क दिल्ली से फरमाइश करने वाले हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और इनके साथी। इसी गीत को सुनने के लिए आप सबने हमें मैसेज भेजा, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके घर वाले। ये फरमाइश करने वाले श्रोता हैं ग्राम लसूड़िया तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश, चंद्र डांगी और इनके घर वाले। ये फरमाइश हमारे पास में आई है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी और इनके साथियों की। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म मेला का ये गीत। आवाजें मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। एसएमएस के तराने, चंबल चैनल के तराने, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और इस प्रोग्राम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9530120020 9530012020। अपनी फरमाइश में गीत की पहली पंक्ति और अपने फरमाइश करने वालों के नाम और अपनी जगह का नाम देवनागरी लिपि में अवश्य लिखें। आइए प्रोग्राम का अगला गाना सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर। गांव सावन बहादुर, जिला कोटा, राजस्थान से रामस्वरूप मालव, गुड्डी मालव, अविका और इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनने के लिए हमें

संदेश भेजा कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, आप सभी मजनू का टिल्ला से, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और साथी। ये फरमाइश हमारे पास में भेजी है रामकरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा और इनके घर वालों ने। फरमाइश करने वाले अगले श्रोता है गांव फरांसी, जिला हिरतसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके साथी। ये फरमाइश हमें भेजी है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बट्टा और इनके घर वाले। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और इनके घर वाले पदमपुर, जिला गंगानगर, राजस्थान से। फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके घर वाले। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी और इनके साथी। और अगली फरमाइश हमें भेजी है रज्जाक मोहम्मद सलीम बेगम, इमरान खान, इमरान इरफान खान और साथियों ने। कुछ और नाम है फरमाइश करने वाले श्रोताओं के। चक 5 एमडी पतरोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल और इनके साथी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है तेजा, बाबाजन नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी नचा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद।

अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर। इस समय आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से जारी है कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। आइए इस प्रोग्राम में अगली फरमाइश सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद उमेश वर्मा, नीरा शिवम वर्मा, यश प्रयाण वर्मा और इनके साथी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे, हर्षिता यस मैस और फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और इनके साथी। ये फरमाइश करने वाले श्रोता सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके साथी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके साथी। पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू और इनके घरवाले। गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, मानशु गोदारा और इनके घरवाले। ये फरमाइश हमें भेजी है गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा, युवत कड़वासरा और इनके साथियों ने। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ममता फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

आइए प्रोग्राम में अब सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप सब हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और ये श्रोता हैं जैन मंदिर की गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और इनके साथी। इसी गीत की फरमाइश आप सबने हमें की है तुषार नागर और इनके साथी छबड़ा बारा राजस्थान से। और मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके साथ ही आप सब हैं ग्राम दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। आइए आप सब की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लेकिन फिल्म का ये गीत।

गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, पूजा कुमारी खटक और इनके घर वाले। फरमाइश करने वाले अगले श्रोता हैं, गांव रायखाना बटिंडा से परमिंदर सिंह सोनी, रातों करण सोनी, दीपू, वीरपाल, कुलदीप, सीमू और इनके साथी। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके साथी। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और इनके घर वाले। पसंद करने वाली यह ग्राम पंचायत काले राव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित और इनके घर वाले। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

फिल्म सन ऑफ इंडिया में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुनना चाहते हैं नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नुहावकर निर्मला नुहावकर विशाल नुहावकर और इनके घर वाले और

इसी गीत को सुनने की फरमाइश आप सब ने हमारे पास भेजी आप हैं सतीश अनेजा विमला अनेजा आप हैं चंडीगढ़ सिटी से फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस और निर्मला विशाल नारायण इंगले मंगला इंगले आशीष मोरहेकर और इनके साथी ये फरमाइश हमारे पास में आई है गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई लोखंडे शैलेश लोखंडे प्रतीक्षा लोखंडे स्वप्निल लोखंडे रक्षता लोखंडे और इनके साथियों की इसी गीत को सुनना चाहते हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा और इनके साथी और ये एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सुनना चाहते हैं सीताराम कांगड़ा बबीता बोट निखिल कांगड़ा तन्वी बोट अंकित कांगड़ा और साथी

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने प्रोग्राम यहीं समाप्त हो रहा है। अगले शुक्रवार को रात्रि 9 बजे आपकी फरमाइशों को लेकर फिर हमारे साथ ही उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए 9533012020953001220। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अब अपने रेडियो साथी राम नारायण मीणा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 KHz पर। रात्रि के 10 बजने को है, अब अगले प्रोग्राम आप सुने।

श्रोताओं नमस्कार, छाया गीत के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से छलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने, ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन। लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली है सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चिचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारे बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को। होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होंठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

उस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम। याद में उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का सर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

0: अभी आप विविध भारती मुंबई का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि